ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948।

1942 के आषाढ़ मास की नौवीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 पर

0: विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर रात के 6:05:15 हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: ऋतु बदले, समय बदले, समाज की व्यवस्था बदले, मगर मीरा का कृष्ण न बदले, कृष्ण की मीरा न बदले। आकाश पर छाए काले मेघों का आगमन मीरा के मनमयू

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा अपरंपार है। श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान की महिमा भी अपरंपार है। अष्ट सिद्ध और नौ निधियों के दाता दुख भंजन श्री हनुमान के स्मरण मात्र से ही अनिष्टकारी शक्तियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। मंगलमय श्री हनुमान अपने भक्तों का सदैव मंगल करते हैं। श्री हनुमान सचमुच संकट मोचन कृपा निधान है। जिन

राम नाम सोए जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसे राम पहचान। इसके साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब

0: ज्ञान हुआ। इसमें आज आपने शोभा जोशी, प्रीति सागर, रतन मोहन शर्मा और साथियों के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। चिंतन इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संत तिरुवल्लुवर के विचार।
1: जो लोग धर्म करते करते बूढ़े हो गए हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी दोस्ती हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मुश्किल में फंसे हो तो उनको जो लोग दूर कर सकते हैं और आने वाली बुराइयों से बचा सकते हैं उत्साह पूर्वक उनकी मित्रता को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर किसी को योग्य पुरुषों की प्रीति और भक्ति मिल जाए तो वो महान से महान सौभाग्य की बात है। जो हमसे अधिक योग्यता वाले हैं यदि मित्र बन गए हैं तो ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिनके सामने अन्य सब शक्तियां तुच्छ हैं। मंत्री ही राजा की आंखें हैं, इसलिए उसके चुनने में बहुत ही समझदारी और होशियारी से काम लेना चाहिए। जो लोग सुयोग्य पुरुषों के साथ मित्रता का व्यवहार रख सकते हैं उनके बैरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस आदमी को ऐसे लोगों की मित्रता का गौरव प्राप्त है जो उसे डांट फटकार सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने वाला कौन हो सकता है। लायक लोग बुरी सोहबत से डरते हैं, मगर छोटी तबीयत के आदमी बुरे लोगों से इस तरह मिलते जुलते हैं मानो वे उनके ही कुटुंब वाले हों। पानी का गुण बदल जाता है, वो जैसी जमीन पर बहता है वैसा ही गुण उसका हो जाता है। इसी तरह जैसी संगत होती है उसी तरह का असर पड़ता है। आदमी की बुद्धि का संबंध तो दिमाग से है, मगर उसकी नेक नामी का दारोमदार उन लोगों पर है जिनकी सोबत में वो रहता है। मनुष्य का स्वभाव उसके मन में रहता है, किंतु वास्तव में उसका निवास स्थान उस गोष्ठी में है कि जिसकी वो संगत करता है। मन की पवित्रता और कर्म की पवित्रता आदमी की संगत की पवित्रता पर निर्भर है। मन की पवित्रता आदमी के लिए खजाने के समान है और अच्छी संगत उसे हर तरह का गौरव प्रदान करती है। धर्म मनुष्य को स्वर्ग ले जाता है और सत्पुरुषों की संगत मनुष्य को धर्माचरण में रत करती है। अच्छी संगत से बढ़कर आदमी का सहायक कोई नहीं और कोई भी चीज इतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी कि बुरी संगत। जिस काम को तुम उठाना चाहते हो उसमें जो मुश्किलें हैं उन्हें अच्छी तरह देखभाल लो, उसके बाद अपनी शक्ति, अपने विरोधी की शक्ति तथा अपनी तथा विरोधी के सहायकों की शक्ति का विचार कर लो और तब तुम उस काम को शुरू करो। जो अपनी शक्ति को जानता है और जो कुछ उसे सीखना चाहिए वो सीख चुका है, और जो अपनी शक्ति और ज्ञान की सीमा को बाहर कदम नहीं रखता उसके आक्रमण कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो आदमी शांतिपूर्वक रहना नहीं चाहते, जो अपने बल का ज्ञान नहीं रखते, जो घमंड में चूर रहते हैं उनका शीघ्र ही अंत होता है। हद से ज्यादा तादाद में रखने से मोर पंख भी गाड़ी की धुरी तोड़ डालेंगे। जो लोग वृक्ष की चोटी तक पहुंच गए हैं वे यदि अधिक ऊपर चढ़ने की चेष्टा करेंगे तो अपने प्राण गंवाएंगे। भरने वाली नाली अगर तंग है तो कोई परवाह नहीं, बशर्ते कि खाली करने वाली नाली ज्यादा चौड़ी ना हो। जो आदमी अपने धन का ख्याल ना रखकर खुले हाथों से लुटाता है उसकी संपत्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाती है।
0: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संत तिरुवल्लुवर के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था।

आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक और 9:45 पर कार्यक्रम मंथन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा खेल दर्पण और जिले की हलचल 9:15 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे श्री अमलेंद्र कुमार की वार्ता, विषय रहेगा खेती बाड़ी में प्रचलित कहावतें एवं मुहावरों का महत्व। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी, क्षय रोग कारण और उपचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रदीप शर्मा। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुनेंगे 7:31 पर। पूर्वाहन 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज फिल्म निर्माता निदेशक आनंद एल रॉय पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा अभिव्यक्ति और सृजनशीलता प्रदर्शन का सशक्त माध्यम सोशल मीडिया। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज हमारी बहनें सुनेंगी डॉक्टर शैली अग्रवाल की वार्ता, बच्चों को संस्कारित करने में मां की भूमिका। चर्चा करेंगे असली जिंदगी बनाम सोशल मीडिया विषय पर। इसके अलावा बहनें सुन सकेंगी अप टू डेट, परवरिश, हमारा स्वास्थ्य। इसमें हम चर्चा करेंगे कमजोर इम्यूनिटी और बीमारियों के बारे में। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा, विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण। क्रम रहेगा आज का सवाल। इसी कार्यक्रम में सुश्री कनक चौहान की वार्ता प्रसारित की जाएगी, सोशल मीडिया के समाज पर सकारात्मक प्रभाव। क्रम रहेगा हेल्थ प्लस, अतुलनीय भारत और चलते चलते। ग्राम्यलोक कार्यक्रम में 6:00 हमारे किसान भाई सुनेंगे चर्चा, पेड़ हैं जीवन का असली आधार, इनके बिना सूना है संसार। डॉक्टर रेवती लाल की वार्ता प्रसारित की जाएगी, पशुओं से अधिकतम दुग्ध उत्पादन कैसे लें। मंडी भाव बताए जाएंगे, मौसम की जानकारी दी जाएगी और इसी कार्यक्रम में आप लोकगीत भी सुन सकेंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 आप सुनेंगे श्री रवि जायसवाल की वार्ता, विषय रहेगा हमारा घर और खुशहाली। चर्चा करेंगे विश्व संसदीय दिवस के बारे में। इसके अलावा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर और सेहत टिप्स के बारे में जान सकेंगे।

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मध्य केनिंगटन ओवल लंदन में खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे शाम।

6:30 से। इसे आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर सुन सकेंगे। आपको याद दिला दें, मैच का आंखों देखा हाल न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नहीं किया जाएगा। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का आज का ये प्रसंग।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। जो ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे राजेंद्र काचरू, संगीत संयोजक सतीश भाटिया। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री अमलेंद्र कुमार की वार्ता। विषय है खेतीबाड़ी में प्रचलित कहावतें एवं मुहावरों का महत्व।
1: किसान भाइयों, पुराने जमाने में आदमी का जीवन जानवरों के शिकार पर तथा पेड़ पौधों के कंदमूल एवं फल फूलों आदि पर निर्भर था। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मानव आहार की आवश्यकता बढ़ी, तो प्रकृति से प्राप्त फलों के साथ साथ फसलों की खेती शुरू हुई। पहले पहल किसान अनाज बो देता था और काट लेता था, लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या और बढ़ी तो लोगों ने गांव बनाकर एवं अपनी एक अर्थव्यवस्था स्थापित करके रहना प्रारंभ कर दिया और खेती में भी उन्होंने कुछ सुधार किया, जैसे खरपतवार आदि को जोतकर मिट्टी में मिलाने लगे जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। यह ज्ञान मानव को वर्षों तक लगातार कृषि के अनुभव से प्राप्त हुआ और इसी अनुभव को कुछ लोगों ने कहावतों एवं मुहावरों में ढालने की कोशिश की, जिससे कि जो आने वाले लोग हैं उनको उसका लाभ मिले। अब जैसे एक कहावत है, बहुत कॉमन है, कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि यदि खेत की देखभाल नहीं करेंगे तो चिड़ियाँ उसको चुन जाएंगी, यानी समय पर ही कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कहावत है, खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभाल लिए लाख लोग हों संग। इसमें यही संदेश दिया गया है, जैसे खेती से संबंधित जितनी बातें हैं, चाहे वो निराई हो, गुड़ाई हो और कटाई छटाई हो, कहने का मतलब उसमें आदमी को स्वयं ही कार्य करना चाहिए। घोड़े का तंग ये इसी से जुड़ा हुआ है। यदि इसके साथ में हमारे साथ कितने भी लोग हैं, यदि हम खुद इसको अपने हाथ से नहीं करेंगे तो उसका हमको समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इसी तरह से कहते हैं कि जेठ चले पुरवाई, सावन धूल उड़ाई। ये बहुत अच्छी कहावत है, इससे एक अनुमान लगाते हैं और ये अनुमान काफ़ी हद तक ठीक भी होते हैं। आज कल वैज्ञानिक भी इस बात को थोड़ा सा मानने लगे हैं कि ये जो कहावतें और मुहावरे हैं इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब कहते हैं जेठ चले पुरवाई, यानी जेठ में यदि पुरवाई पूरब की हवा चलती है तो ऐसा माना जाता है कि सावन में धूल उड़ती है, यानी सावन में जो बरसात होनी चाहिए वो बरसात नहीं होती। और कई बार ऐसा देखा गया कि ये बात भी बिल्कुल सही है। एक जगह ये भी कहा गया है, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। यानी खेती को सबसे उत्तम माना गया है, हालांकि आजकल नौकरी या दूसरे जो साधन है इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन पुरानी ये कहावत है कि खेती ही उत्तम है, बशर्ते उसको मेहनत से किया जाए, लगन से किया जाए, तो उससे हमको काफ़ी लाभ मिल सकता है। और उसी में अगर हम ढील देते हैं, उसमें काम ठीक से नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो स्थिति ये भी आ जाती है कि हो सकता है हमको भीख मांगनी पड़े। अब ऐसे ही कहा जाता है, दिन को बादर रात को तारे, चलो पिया कहूँ करें गुजारे। ये कहावत मुख्य रूप से बरसात के बारे में कही गई है, यानी दिन को बादर, दिन में बादल दिखाई दें और रात को तारे दिखाई दें, तो इसका मतलब बरसात होने वाली है या बरसात का मौसम चल रहा है। और साथ ही इससे एक यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है, तो तेज़ बारिश होने वाली है तो उसी से संबंधित किसान भाई अपना इंतजाम कर लें, जैसे मेड़बंदी है या इस तरह की फसल करें जो तेज़ बारिश में जिसका लाभ मिल सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, इन मुहावरों में और कहावतों में पहले से ही एक संदेश होता है, एक चेतावनी होती है। यदि इन सब बातों को हम गौर करें, किसान भाई गौर करें, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। एक बहुत ही दूसरी कहावत भी है जो कि जनरली गांव में बड़े बूढ़े बैठकर करते कह देते हैं कि मंगलवार को पड़े दीवारी, बड़े किसान मिटे व्यापारी। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि मंगलवार वाले दिन दीपावली पड़ती है तो किसान का बहुत फ़ायदा होता है, मिटे व्यापारी और व्यापारी को नुकसान होता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कुछ सत्यता पाई गई हैं, कुछ ऐसी कहावतें लोगों का विश्वास है और इसी विश्वास से

0: हम जब इन कहावतों और मुहावरों पे देखते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। अब प्रचलित कहावतों के एक महान जनक हुए हैं घाघ जी, घाघ का नाम सभी जानते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, खास करके बैलों के बारे में। उनका ये कहना है कि बैलों को भली प्रकार जांच परख कर ही लेना चाहिए, केवल उनका रंग देख कर नहीं। बैल बिसावन जो चले, लीजो जांचे लेखे, बैलों के रंग पर घाघ भड्री का मत देखे। यानी बैलों को जांच परख कर और अच्छी तरह से देख कर ही लेना चाहिए, केवल उनका रंग देख कर नहीं। बैलों के विषय में घाघ जी ने और कहा है, सात दंत उदंत को रंग जो काला होए, इनको कभू न लीजिए मोल जो चाहे होए। अर्थात सात दंत वाला, दांत वाला बैल और काले रंग का बैल भले ही उदंत हो, उदंत यानी उसके दूध के दांत भले ही न टूटे हों और कितने ही कम मूल्य पर मिल रहा हो, बहुत कम मूल्यों पर मिल रहा हो, उसको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। बैलों के रख रखाव को भी प्रदर्शित करती हुई कुछ कहावतें, जैसे ना मोए नाथो उलिया कुलिया, ना मोए नाथो दाएं, 20 बरस तक करूं बदरई, जो नहीं मिले हैं गाएं। अर्थात बैलों को छोटी छोटी जोतों से बचाना चाहिए, दाएं नहीं जोतना चाहिए, तथा गायों से यह दूर रखा जाए तो बैल अधिक समय तक कार्य करता रहता है। जैसे इसमें कहा गया है, 20 बरस तक करूं बदरई, 20 बरस तक काम कर सकता है। इसी प्रकार प्रचलित कहावतों में बैलों की बुराइयों का भी पूरी तरह से वर्णन किया गया है। अब जैसे बैलों के विषय में ना, कि बैल खरीदते समय किन बातों को देखा जाए। जैसे कहते हैं, उजर बरौनी मुंह का महुआ, ताए देख हरवाहा उरुआ। अर्थात जिन बैलों की आंखों की बरौनी, आंखों का जो ऊपरी पलकें होती हैं वो उजले रंग की हों, वे बैल अच्छे नहीं होते, उनसे किसानों को बचना चाहिए। यानी इस तरह के बैल किसानों को नहीं खरीदना चाहिए। तो अब देखिए कितनी अच्छी बातें मुहावरे कहावतों में कही गई हैं, जिनसे हम लोग फायदा उठा सकते हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री अमलेंद्र कुमार की वार्ता। विषय था खेतीबाड़ी में प्रचलित कहावतें एवं मुहावरों का महत्व। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मध्य केनिंगटन ओवल लंदन में खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6:30 बजे से। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मैच का प्रसारण आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। आपको याद रहे कि मैच का प्रसारण न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नहीं किया जाएगा।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीयरक्षा अलङ्करणसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां केन्द्रीयसशस्त्रारक्षकबलानां केन्द्रशासितारक्षकाणां कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां केन्द्रीयसशस्त्रारक्षिबलानां अन्यसुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणाम् असाधारणशौर्यकार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तमयुद्धसेवापदकानि

0: त्रिंशत् परम विशिष्ट सेवा पदकानि, द्वादश उत्तम युद्ध सेवा पदकानि, षट्पञ्चाशत् अतिविशिष्ट सेवा पदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मन्त्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे अष्टदिनांके राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत पञ्चदश वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि पञ्चाशत् वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रीय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटिरूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रीय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेश प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं, देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणाचलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्याङ्कनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमाणस्य 57 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति, सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंध

0: को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बेहद
2: जरूरी हो जाता है। श्रोताओं पूरी उम्मीद है कि दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian

0: से दो तिहाई पुरुष होते हैं। टीबी यूं तो किसी भी व्यक्ति को शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, परंतु प्राय देखा गया है कि टीबी या क्षय रोग फेफड़ों में ही होता है। इसीलिए क्षय रोग को दो भाग में बांटा गया, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी होती है जो फेफड़ों में सीमित होती है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी उसे कहते हैं जो शरीर के किसी भी अन्य अंग में होती है। क्योंकि फेफड़े की टीबी में रोगी को बलगम आता है, इसलिए रोगियों को दो भाग में बांटा गया है, स्मियर पॉजिटिव और स्मियर नेगेटिव। स्मियर पॉजिटिव रोगी वो होते हैं जिनके बलगम में टीबी के कीटाणु मौजूद रहते हैं, लेकिन स्मियर नेगेटिव रोगी के बलगम में टीबी के कीटाणु नहीं मिलते। ये स्मियर पॉजिटिव रोगी जब भी खांसते हैं, थूकते हैं या छींकते हैं तो इनकी बीमारी के कीटाणु वायुमंडल में तैरने लगते हैं, और जो भी एक सामान्य व्यक्ति इनके आसपास होता है तो उसकी गहरी सांस के साथ ये कीटाणु उसके अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं और वो व्यक्ति भी टीबी से संक्रमित हो जाता है। अब बात आती है, जब बीमारी इतनी गंभीर हो तो उसको पहचाना कैसे जाए। तो टीबी के सामान्य लक्षण ये हैं, किसी भी व्यक्ति को दो सप्ताह या उससे ज्यादा की खांसी हो, हल्का बुखार रहता हो जो शाम को बढ़ जाता हो, भूख ना लगती हो, वजन गिरता जा रहा हो, खांसी आती हो, छाती में दर्द रहता हो, बलगम आता हो और उसमें कभी कभी खून आ जाता हो। तो साथियों, इन लक्षणों का कोई भी अगर व्यक्ति हो तो उसकी टीबी के लिए जांच करना अनिवार्य है। बात आती है, जांच कौन सी कराई जाए। पहले हम लोग टीबी की जांच के लिए एक्सरे किया करते थे, पर पाया गया कि 10-15% रोगी उसमें छूट जाते थे, और कभी कभी तो 40% ऐसे व्यक्तियों का उपचार शुरू हो जाता था जिनको के टीबी के इलाज की आवश्यकता ही नहीं होती थी। इसलिए एक्सरे को छोड़ा गया और बलगम परीक्षण को अपनाया गया। आपको बता दूं कि अपने जनपद में 38 बलगम परीक्षण केंद्र स्थापित हैं, जहां पर यह जांच निशुल्क उपलब्ध है। बलगम परीक्षण के दौरान क्योंकि टीबी के कीटाणु स्पष्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है, और साथ ही साथ इस बलगम परीक्षण के माध्यम से हम बीमारी की गंभीरता को भी आंक सकते हैं, और उपचार के दौरान जब पुनः करते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि रोगी को उपचार से कितना लाभ हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जांच है और यही टीबी की जांच का आधार है। तो श्रोताओं, ये बलगम परीक्षण तो जांच रही फेफड़े की टीबी के रोगियों के लिए, लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था कि क्षय रोग तो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के गले में गांठें हो जाती हैं, कभी कभी रांगों में गांठें हो जाती हैं या बगल में गांठें हो जाती हैं, कुछ लोगों के हड्डी से पस आने लगता है और कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं और दौरे आने लगते हैं जब टीबी का संक्रमण दिमाग में पहुंच जाता है। तो जब ये अन्य अंगों की टीबी की बात आती है तो हमें जांच अलग अलग करनी पड़ती है। अगर कोई गांठ की टीबी हम उम्मीद कर रहे हैं तो गांठ में से सुई के द्वारा पानी निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। अगर पेट में हम टीबी सोच रहे हैं तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। कभी कभी दिमाग की कर रहे हैं तो हम रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उसका जांच करते हैं, अन्यथा हम सीटी स्कैन या एमआरआई की भी सहयोग लेते हैं, और इस तरीके से हम शरीर के अन्य अंगों की टीबी की जांच भी पक्की कर सकते हैं।
1: क्षय रोग कारण और उपचार। अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में ये लघु वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर प्रदीप शर्मा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं सोमवेश्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

0: मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप

0: में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई कल अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में कल 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीलीभीत सहित प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
1: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम डिजिटल युद्ध स्मारक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मुरादाबाद में विकास कार्यों, राजस्व, कानून व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टैंप और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
3: स्टैंप विभाग का एक शासनादेश ऑन नए रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम विस्तृत बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ, उसको हम निरस्त करते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की

0: बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल HSD की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल HSD देने की समय सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक ICU का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिरोजाबाद जिले के फरीहा थाना क्षेत्र के चिडरई गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एटा जिले के अबागढ़ से करीब 8 सवारियों के साथ फरीहा आ रहे ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर जाने से ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां पेड़ के नीचे दब गईं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय 5 सवारियों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में बीती रात से हो रही वर्षा से वहां के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों के भीतर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। सभी सुनने वालों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप? अब ये मत कहिएगा कि बहुत ज्यादा गर्मी है। जी हाँ, जून का महीना है, हालांकि ये आखिरी दिन है आज जून का, और पिछले कई दिनों से हर जगह बहुत तेज गर्मी है, धूप निकलती है। लेकिन कई जगहों पर अभी हमने थोड़ी देर पहले समाचारों में ये सुना है कि बारिश भी हो रही है, और जहां बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां गर्मी से काफी हद तक राहत मिली होगी। आने वाले एक दो दिनों में हमारे यहां यानी आगरा शहर की हम बात कर रहे हैं, ताजनगरी की बात कर रहे हैं, तो यहां भी एक दो दिन में बारिश होने की संभावना है। मॉनसून आने वाला है और जैसे ही मॉनसून आएगा तो फिर तो बारिश होगी ही, और बारिश के आने से पहले, अब ये तो सबको मालूम है कि बारिश तो आनी ही है, होनी ही है मॉनसून आ जाएगा तो उससे पहले की कुछ सावधानियां हैं, हम उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लें और बारिश में होने वाली जो परेशानियां उनसे बचने के लिए अभी से हम थोड़ी सी तैयारी कर लें, और तैयारी के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। लेकिन समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये सोचिए कि आजकल हर हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, और हम मोबाइल की स्क्रीन पर कितना समय गुजार देते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर यानी स्क्रीन पर हम थोड़ा सा समय कम कर दें और बाकी जो बहुत ज़रूरी काम हैं समय समय पर जो करने ही होते हैं उनको हम कर लें। सोशल मीडिया की बात चली है, स्क्रीन की बात चली है, तो घर में चाहे जितने भी लोग हों, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हों, ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन पर अपना समय गुजारते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अकेले हैं, लोग घर से बाहर चले जाते हैं तो हम घर पर बैठकर क्या करें, फिर मोबाइल ही देखते हैं और रील देखते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया जो है देखा जाए तो है तो बहुत काम की चीज़, लेकिन सोचने की बात यह है कि कहीं इससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। और नुकसान का मतलब ये नहीं होता है कि हमें किसी तरह की आर्थिक नुकसान हो रहा है, यानी हमारा कोई रुपया पैसा कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा धन है, उससे भी ज्यादा बड़ा समय। अगर हमारे पास समय है और उसका सही हम उपयोग करें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन आजकल चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, महिलाएं हों या पुरुष हों, ज्यादातर देखने में आ रहा है कि मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसका बहुत अच्छा सदुपयोग भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि अपने प्रदर्शन की जरूरत होती है, वो कहते हैं कि हमारा थोड़ा सा शोइंग नेचर है। तो अब शोइंग नेचर का मतलब ये है कि आप क्या क्या प्रदर्शन करेंगे, क्या क्या आप दिखाएंगे। कई बार तो कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं कि जिनको पढ़कर, सुनकर, देखकर खुद को भी शर्म आती है और सोचते हैं कि जिन लोगों ने ये कंटेंट्स अपलोड किए हैं या बनाए हैं, क्या उनके मिलने वाले, घर वाले, रिश्तेदार कोई तो देखता होगा, और अगर देखता होगा तो क्या उनके बारे में कुछ सोचता नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें ये बहुत अच्छे से एक विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे लिए सोशल मीडिया पर क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, मोबाइल आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। अगर मोबाइल ना हो तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे काम ठप हो गए हों। हो भी जाते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत जो हो गई है, लेकिन मोबाइल या यूं कहें कि सोशल मीडिया एक संचार का बहुत अच्छा माध्यम है। इससे आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अपने दोस्तों से, परिवार वालों से

मैसेज करके, वॉइस कॉल करके, वीडियो कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। आपके बच्चे हैं कहीं बाहर रह रहे हैं, जॉब करते हैं, तो आप उनसे मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। एक ज़माना था जब कहीं बाहर जाते थे तो कहते थे कि जब पहुंच जाओ तो चिट्ठी डाल देना। अब चिट्ठी को जब आप लिखेंगे तो पहुंचने में 7-8 दिन लग जाते थे, तब आपकी खैर खबर मिलती थी। अब मोबाइल है तो सेकंड्स में आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पहुंचे, क्या खाया, क्या पिया, ये सब कुछ जानकारी मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम चीज़ों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अश्लील और फूवर कंटेंट्स की भरमार दिखाई

0: और पुअर कंटेंट्स की भरमार दिखाई दे। व्यूज और लाइक्स की दौड़ में कुछ युवक युवतियां मर्यादा की सीमाओं को भी पार कर रहे हैं। आज करीब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हमें यह सोचना चाहिए कि अश्लील कंटेंट उनकी मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई से भटकता है, उनका काफी समय सोशल मीडिया पर गुजरता है, इसलिए सोशल मीडिया कंटेंट्स के लिए एक प्रभावी गाइडलाइन कोई बने या ना बने, लेकिन जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, अगर हम कंटेंट्स तैयार नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हम देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए, किस तरह का सुनना चाहिए और किस तरह के कंटेंट्स को हमें हमेशा के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए। और जो क्रिएटर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम जो कंटेंट्स तैयार कर रहे हैं और इसे अपलोड करेंगे, लोग देखेंगे, तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा ऐसा कंटेंट तैयार कीजिए जिससे कि लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को कुछ लाभ हो, उनके ज्ञान में वृद्धि हो। अगर मनोरंजन भी करना है तो एक स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, उसमें अश्लीलता या फूवड़ता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब ये करने वाला कौन है? देखने वाले भी और बनाने वाले भी। आजकल हम देख रहे हैं कि रील्स बनाने की बहुत, क्या कहें, बुरी आदत कहें, अच्छी आदत कहें, जो भी आप समझें वो कह सकते हैं, लेकिन आदत कोई भी हो, लत कोई भी हो, बुरी होती है। कहते हैं कि जब अति किसी चीज की हो जाती है तो नुकसान करती है। तो आजकल सोशल मीडिया पर भी आप यूं मानकर चलिए कि कुछ मामलों में बहुत ज्यादा अति हो रही है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, युवा भटक रहे हैं और रोजाना अखबारों में जो समाचार हम पढ़ते हैं, कहीं परिवार में कलह पैदा हो रही है, कहीं बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का निश्चित तौर पर उसका प्रभाव है। तो अगर हम क्रिएटर हैं या देखने सुनने वाले हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो हमें एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि हमें किस तरह से उसका उपयोग करना है। कोई भी चीज़ देखिए, फायदे भी पहुँचाती है और नुकसान भी करती है। जब हम छोटे थे और 9th, 10th, 11th में जब पढ़ा करते थे तो विज्ञान पर निबंध लिखने के लिए आता था और ये कहा जाता था कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, तो ये भी एक विज्ञान का ही आविष्कार है, तो इसके भी फायदे हैं और नुकसान हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम ये सोचें और हमें ये फैसला करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि हमें इसको किस तरह से उपयोग में लाना है, अच्छे के उपयोग में लाना है या बुरे के उपयोग में लाना है। हालांकि अच्छे के लिए ही हमें करना चाहिए, हर चीज की अपनी उपयोगिता है और सकारात्मकता है, बस हमारी सोच और हमारे काम करने का तरीका सकारात्मक और अच्छा होना चाहिए।
1: अभी भी।

जी हाँ, कभी कभी सोशल मीडिया पर जो कंटेंट्स है, जो खबरें हैं, वो भी हवा हवाई होती हैं। तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया एक बेहतरीन सेवक है, लेकिन एक बुरा मालिक

0: रही है। इसके सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाने के लिए इसके उपयोग का एक निश्चित समय तय करना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर सूचनाएं आपके लिए।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा कर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती एफएम के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के संग।
1: आज की देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ।
1: आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 24 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां।
0: आसपास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आयुष्मान लाभार्थियों को ऑनलाइन ब्यौरा में पिता का नाम, जन्मतिथि और पता गलत दर्ज होने पर निःशुल्क इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे करीब 1,00,000 लाभार्थी हैं जिनके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज में दर्ज पिता के नाम सहित अन्य ब्यौरे में ऑनलाइन दर्ज ब्यौरा में अंतर है। इन लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन सके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 3 स्तर पर जांच के बाद संशोधन किया जाएगा। राज्य सरकार यूपी में 1 जुलाई से मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना की खास बात यह होगी कि पंजीकरण के बाद मजदूरों को 15 दिनों में काम न दिया गया तो उसे 16 दिनों से दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 15 दिनों तक भुगतान न होने की स्थिति में मजदूर को 0.05% की दर से विलंब मुआवजा भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में अधिवक्ताओं और डीड राइटरों के भारी विरोध के बाद विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को ऑनलाइन रजिस्ट्री की दी गई सुविधा समाप्त कर दी है। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री के अनुसार पंजीकरण मॉड्यूल संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 विषयों में कुल 910 पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिया। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार जिन पदों के लिए लिखित परीक्षा 18 से 19 अप्रैल को कराई गई थी जिसका औपबंधिक परिणाम 9 जून को घोषित किया गया था, इसमें सफल कुल 3,155 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त तक विभिन्न तारीखों में आयोजित किया जाएगा। 21 जुलाई को अर्थशास्त्र, 22 जुलाई को वनस्पति विज्ञान और दर्शन शास्त्र, 23 जुलाई को रसायन विज्ञान, 24 जुलाई को अंग्रेजी, 28 जुलाई को कृषि अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और भूगोल, 29 जुलाई को भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान, 30 जुलाई को चित्रकला, संस्कृत एवं उर्दू, 31 जुलाई को प्राचीन इतिहास, सैन्य विज्ञान और संगीत गायन के इंटरव्यू होंगे, 4 अगस्त को शिक्षा मित्र एवं इतिहास, 5 अगस्त को पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, संगीत, तबला, शारीरिक शिक्षा और जंतु विज्ञान, 6 अगस्त को विधि एवं राजनीति विज्ञान के साक्षात्कार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 2 से 4 जुलाई तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के प्रवेश पत्र मंगलवार से यानी आज से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आयोग ने 22 जून को ही परीक्षा जनपद की सूचना जारी कर दी थी। अब मंगलवार से

प्रवेश पत्र उपलब्ध होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लागू की जा रही तीन भाषा की नीति को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों में चल रही तमाम उलझनों पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को विराम लगा दिया। बोर्ड ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर साफ किया है कि तीन भाषा पढ़ाए जाने की नई व्यवस्था पूरी तरह से कक्षा 6 में लागू की जाएगी। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा पढ़नी तो होगी, लेकिन 10वीं की बोर्ड में उन्हें तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। बोर्ड के अनुसार तीन भाषा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं से जोड़ना और बहुभाषी बनाना है। इसी कारण मौजूदा बैचों की राहत दी गई है। नई व्यवस्था को पूरी तरह से वर्तमान कक्षा 6 से लागू किया जाएगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से खुल गए हैं। अभी भी कई जनपदों में तापमान 40 डिग्री है। इसे देखते हुए बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षकों के लिए दिग्दर्शिका तैयार की गई है। निर्देश के अनुसार दिग्दर्शिका का उद्देश्य भीषण गर्मी से बचाव, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान, प्राथमिक उपचार तथा बच्चों के बचाव के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यवहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही विद्यालयों में क्या करें क्या न करें संबंधी पोस्टों से बच्चों, अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। शिक्षक प्रार्थना सभा, कक्षा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा विद्यालय की दैनिक दिनचर्या से उनको हीट वेव से बचाव के उपायों से अवगत कराएंगे। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, तेज धूप से बचने, हल्के और सूती कपड़े पहनने, फूलों के और फलों के सेवन तथा हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों की पहचान के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही बच्चों को यह भी सिखाया जाएगा कि यदि किसी सहपाठी की तबीयत बिगड़ती है तो तत्काल शिक्षक को सूचना दें। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पात्र शिक्षक 13 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाएगा जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। कोचिंग पढ़ाने वाले अध्यापकों को इस पुरस्कार का लाभ नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय का परिणाम प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज न होने से घोषित नहीं हो पा रहा है। कॉलेजों को प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज करने के लिए 2 बार मौका दिया जा चुका है, इसके बाद भी कॉलेजों ने अंक दर्ज नहीं किए हैं। ऐसे कॉलेजों की सूची तैयार की जा रही है। अब इन कॉलेजों से 50,000 रूपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर के बीए, बीएससी, बीकॉम, द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर और परास्नातक स्तर के एमए, एमकॉम, एमएससी, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 मई तक कराई गई थीं। परीक्षाएं ओएमआर पर कराई गई थीं जिससे मूल्यांकन में समय न लगे। ओएमआर शीट को स्कैन करने के बाद उसका मूल्यांकन कराया गया। जिन कॉलेजों ने प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज नहीं किए गए हैं उनका परिणाम रोक दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र स्नातक से लेकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वय के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख 15 जुलाई निर्धारित की गई है। यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा अनुभव देने के लिए सोमवार को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बैटरी ऑपरेटेड कार सेवा का शुभारंभ किया गया। स्टेशन निदेशक ने सेवा का शुभारंभ किया। सुविधा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अस्वस्थ यात्रियों, महिलाओं, छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों और अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशन परिसर और विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। सुविधा 24 घंटे यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

0: और अब आसपास कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार रामपाल सिंह पुत्र श्री रामबीर सिंह निवासी ग्राम चीती थाना पिसावा जनपद अलीगढ़। रामपाल सिंह दिनांक 24 दिसंबर 2025 से मध्यरात्रि 12 बजे से अपने घर से लापता है। रामपाल सिंह की उम्र करीब 50 वर्ष है। रंग गेहुआ है। कद 5 फीट 6 इंच। शरीर पतला और छरहरा है। चेहरा लंबा माथा चौड़ा है और हल्की दाढ़ी मूछें हैं। रामपाल सिंह अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर गया था जिसकी संख्या है UP13CE8940। रामपाल सिंह के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना के अनुसार रमन चौहान पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह निवासी गांव ताजपुर थाना चंडौस जनपद अलीगढ़। रमन चौहान लगभग 3 वर्ष पूर्व अपने घर से चला गया था। रमन चौहान की उम्र 28 वर्ष है। कद 5 फीट 6 इंच। दाहिने हाथ पर रमन चौहान लिखा हुआ है। रमन चौहान के बारे में यदि कोई सूचना या जानकारी मिले तो आप थाना प्रभारी थाना चंडौस जनपद अलीगढ़ को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार शाकिर पुत्र जब्बार निवासी हजीरा वाली दरगाह बावरी मंडी थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़। शाकिर दिनांक 4 जून 2026 से सुबह 9 बजे से अपने घर से लापता है। शाकिर की उम्र 32 वर्ष है। कद 5 फीट 5 इंच। जिस्म पतला है। रंग सांवला है और गाल पर दाएं गाल पर चोट का निशान है। शाकिर के बारे में कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़ को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत

0: एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।

0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में

0: जय गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of

0: That began on Thursday disrupted U.S. President Donald Trump's attempt to end hostilities with Iran and negotiate a settlement that addresses Tehran's nuclear program. Traffic in the Strait of Hormuz fell during the tit-for-tat strikes, slowing the recovery of the waterway. Iran and U.S. exchanged missile strikes over the weekend, collapsing trade in the Strait of Hormuz for multiple days. Later, U.S. and Iranian officials agreed to temporary ceasefire yesterday after President Trump threatened to escalate the conflict. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give five-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, U.S. last night. In another round of 32 fixture, Germany got eliminated from the tournament after a 1-1 draw against Paraguay that led to a penalty shootout in Foxborough. Gustavo Alfaro's men held their nerve in the penalty shootout to secure a historic 4-3 victory. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
1: Thank you, Abhishek. A month-long special intensive revision SIR of the electoral roll beginning today is covered by some of the dailies. SIR process begins in Delhi and four states today, reports the Asian Age. Voter verification drive begins in Delhi today, leads the Times of India. The statesman quoting Prime Minister Narendra Modi says, Indian diaspora living bridge between India, Seychelles. Bengal passes preventive detention legal curbs bill, notes the Hindu. Prime Minister to skip Khamenei's state funeral leads the Asian Age. And finally, Delhi mandates all two new wheelers to be electric from 2028 to fight pollution, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफरा जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाजे के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राजील जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम से मुतालिक आयद आरजी जाबता जाति पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ یکم جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پیٹرول پمپ پر موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت پر

0: क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है।

किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। इसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था महबूब की मेहंदी। बप्पी लहरी की तर्ज पर आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा एक और गीत। फिल्म का नाम है चलते चलते। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की।

चलते चलते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शैलेन सिंह की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार बप्पी लहरी। 10 नंबरी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था 10 नंबरी। एप्रिल फूल, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

0: आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म का गीत। इसे गाया था मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। शैलेंद्र के गीत की धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: गीतांजलि कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं ओपी नैयर की तर्ज पर SH बिहारी की गीत रचना। फिल्म का नाम है ये रात फिर न आएगी। आवाज महेंद्र कपूर की।

एसएच बिहारी का लिखा गीत आप सुन रहे थे। ओपी नैयर की तर्ज पर इसे गाया था महेंद्र कपूर ने। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। इसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है सागर। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और एसपी बाला सुब्रमण्य।

सागर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 हुए हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नहीं।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
3: कन्नौज जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरो ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन एवं योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट योग प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री असीम अरो ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। शास्त्रों में भी स्वस्थ शरीर को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। जनपद की सभी तहसीलों, विकास खंडों और नगर निकायों, ग्राम पंचायतों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कन्नौज जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी और विकसित सघन खेत बचाओ अभियान विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदर्शनी में भूमि संरक्षण, कृषि पर्यटन, शिक्षा, पंचायती राज और सूचना सहित विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना रहा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। कन्नौज जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के अवसर पर ठठिया मंडी में

0: एक कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों को आलू की नई किस्मों, आधुनिक खेती के तरीकों, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों ने विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं और सवालों पर चर्चा की, साथ ही खेती में नई तकनीकों को अपनाने की जानकारी ली। राज्य मंत्री ने ठटिया मंडी को आलू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के निर्णय पर उद्योग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने कहा कि
1: कन्नौज में आलू की किसानी खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जो नए बीज लेकर के आई, नई पद्धतियां बता रही हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी का कि उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारी इस मंडी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे आलू के लिए।
0: उन्होंने कहा कि इससे उन्नत बीज, नई खेती तकनीकों और आलू प्रसंस्करण के उन्नत तरीकों की जानकारी मिलेगी, साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी और बेहतर मूल्य सुनिश्चित होंगे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि आलू सब्जी या चिप्स निर्माण तक सीमित नहीं है, इससे स्टार्च सहित अनेक औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कन्नौज में प्रस्तावित स्टार्च प्रसंस्करण इकाई से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कन्नौज जिले में भारत सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत टपक एवं फव्वारा सिंचाई के लिए इच्छुक किसानों को 90% तक अनुदान मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना और कम लागत में उपज को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत किसानों को 90% तथा अन्य किसानों को 80% अनुदान का प्रावधान है। चालू वर्ष में 571 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और उद्यान विभाग ने सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के तहत तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला हमारा पोर्टेबल सिंचाई के लिए पोर्टेबल पाइप है, इसमें 65 और 75% की सब्सिडी है, और दूसरा हमारा ड्रिप और तीसरा हमारा मिनी स्प्रिंकलर है। तो इसमें 80 और 90% की छूट है। जो हमारे कृषक भाई 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, उनका सब्सिडी स्लैब अधिक 90 और 75% स्लैब आएगा, और जो बड़े कृषक हैं उनका जो है 65 और 80% है।
0: अब तक 223 किसानों के खेतों में प्रणाली स्थापित कर उन्हें लाभान्वित भी किया गया है, जिससे जिले का 234 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आ गया है। पिछले साल 1000 से अधिक किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से 705 किसानों को लाभ मिला था। कन्नौज जिले में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सभी विकास खंडों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल भारत की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां समाज के नौनिहालों एवं मातृशक्ति के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मार्टफोन उपलब्ध होने से कार्यकर्तियों को विभागीय योजनाओं के संचालन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पोषण ट्रैकिंग तथा शासन की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने में और अधिक सुविधा होगी। तकनीक के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं गति आएगी, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा। कन्नौज जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जनपद में तम्बाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लोगों को तम्बाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गई। 29 मई से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां एवं प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित हुई।
3: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
4: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ से अधिक लागत की 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बांग्लादेश से कई दशक पूर्व विस्थापित 4693 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपे और 100 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है।
5: पीलीभीत में 5 दशक से इंतजार कर रहे बंगाली परिवारों को भी उनका जमीन का अधिकार और उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रारंभ हो गया है। इन सब के लिए आपको बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं और विश्वास करता हूं कि आप इस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।
4: उन्होंने कहा सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए

0: विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस अवसर पर पीलीभीत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है।
1: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: सरकार की जनहितकारी नीतियों और अनुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है। पीलीभीत जिले में गोमती नदी को उद्गम स्थल से अविरल बहाने और स्वच्छ रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सभी घाटों पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में जागरूकता मेलों का आयोजन किया गया। इनमें नदी की स्वच्छता और सफाई खुदाई के कार्यों का शुभारम्भ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद द्वारा किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। 1 जुलाई से जी राम जी योजना के तहत नदी की खुदाई और साफ सफाई के काम प्रारंभ होंगे। नदी के सभी 16 घाटों पर प्रकाश के लिए सोलर लाइटें लगाई गई हैं और बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था कराई गई है। गोमती नदी के माधव टंडा स्थित उद्गम स्थल पर ग्रीष्मकालीन गोमती महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ स्कूली बच्चों की गोमती पर आधारित प्रतियोगिताएं कराई गयी और ब्रज की रासलीला मंडली द्वारा सुंदर लीला मंचन किया गया। सभी प्रतिभागियों को मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा और SDM प्रमेश कुमार ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर गोमती नदी को सजाने, संवारने और स्वच्छ रखने के लिए सभी 16 घाटों पर 10-10 गोमती मित्रों की तैनाती युवा कल्याण विभाग द्वारा करने की घोषणा की गई। अब तक घोषित किए गए 82 गोमती मित्रों को परिचय पत्र वितरित किए गए। पीलीभीत जिले में गन्ने की फसल के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 2 लाख किसानों के खेतों तक गन्ना विकास विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया कि गन्ने के साथ गेंदे की मिलवा खेती करके किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पीलीभीत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार शामिल हुए। गांव से शहर तक स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मानसून सीजन के चलते 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आमदनी पर संतोष व्यक्त किया।
2: पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र इस बार काफी अच्छा गया है। जहां तक हम लोग बात करते हैं राजस्व की, राजस्व हमारा जो है पिछले साल की तुलना में करीब 5 लाख रुपए अभी तक बढ़ चुका है। साथ ही साथ इस बार जो विशेषता रही है पर्यटन सत्र की, उसमें खास बात रही है कि जो टाइगर के बच्चे हैं वो काफी अच्छी संख्या में दिखे हैं और काफी जगहों पे दिखे हैं। करीब 4 बाघिना ऐसी रही हैं जिनके बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पर्यटन सत्र पर्यटकों की संख्या के लिहाज से और जो है साइटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा गया है।
0: उन्होंने कहा इस बार बाघ और अन्य वन्य जीवों की अच्छी साइटिंग होने से सैलानी काफी प्रभावित हुए।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 9:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे निराला फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे पीएल संतोषी ने, धुन बनाई थी सी रामचंद्रन ने। कार्यक्रम का अगला गीत एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज में है। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

इन दीवर का लिखा गीत आप सुन रहे थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज पर। इसे गाया था लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में। ताजमहल, आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत। गीत साहिर का है, संगीत रोशन का, आवाज मोहम्मद रफी की।

ये दो आवाजें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था ताजमहल। गीतकार थे साहिल उद्यानवी, मौसिकार रोशन। हरे कांच की चूड़ियां, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले की आवाज है गीत।

हरे कांच की चूड़ियां, इस फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी की धुन पर इंदीवर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। गायक कलाकार हैं मुकेश।

मुकेश की आवाज में आपने इंदीवर का लिखा गीत सुना। इसे संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत मंजूषा अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं छेदीलाल। प्रस्तुत है छेदीलाल का गाया रांझा।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छेदी लाल का गाया राजा। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुर सरिता। स्वीकार कीजिए विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

सुरसरिता कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं अलबेला फिल्म का एक सदाबहार गीत। गीत रचना समीर की है, संगीत जतिन ललित का, गायक कलाकार हैं ए हरिहरन और अलका याग्निक।

अलबेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे गाया था ए हरिहरन और अलका याग्निक ने। गीतकार थे समीर, संगीतकार जतिन ललित। इंडियन बाबू, आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत। गीत एक बार फिर समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का, आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

इंडियन बाबू फिल्म का गीत आपने सुना, आवाजें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की, गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप सुन रहे थे परवाना फिल्म का गीत। इसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी संजीव दर्शन ने। आइए अब सुनते हैं हलचल फिल्म का एक गीत। गीतकार एक बार फिर समीर, संगीतकार विद्यासागर, गायक कलाकार हैं शान और साधना सरगम।

ये दो आवाजें थीं शान और साधना सरगम की। फिल्म का नाम था हलचल। गीत लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी विद्यासागर ने। आइए अब सुनते हैं सुरसरता कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कैदी। गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का, आवाजें हैं कविता कृष्णामूर्ति और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

प्रेम कैदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। गीत लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। सुरसरिता कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में दीवाना दीवाना फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का है।

दीवाना दीवाना इस फिल्म का गीत आपने सुना। इसे गाया था उदित नारायण और साधना सरगम ने। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का था। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है शब्बीर अहमद खां का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया राग तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, तो लीजिए सुनिए शब्बीर अहमद खां का गाया राग तोड़ी।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार शब्बीर अहमद खान द्वारा राग तोड़ी में ख्याल गायन, और कार्यक्रम था शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज, और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रोशनी से जगमगाते कैमरे, हजारों दर्शकों की तालियां, बड़े बड़े सितारे और उनके पीछे खड़ा एक ऐसा इंसान जो स्वयं शायद ही कभी सुर्खियों में आता हो, लेकिन उसकी कल्पना, उसकी सोच और उसकी संवेदनाएं ही उन सितारों को अमर बना देती हैं। उसने कभी सुपर हीरो की कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि आम लोगों के असाधारण जीवन को पर्दे पर उतारा। आज जिस कलाकार के जीवन का सफर आप और हम मिलकर तय करेंगे, उसने छोटे शहरों की गलियों, चाय की दुकानों, बनारस के घाटों, परिवारों की नोकझोंक और सच्चे प्रेम को एक ऐसी खूबसूरती से फिल्माया कि दर्शकों को अपनी ही जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देने लगी। उसकी फिल्मों में ना दिखावा है ना बनावटीपन, वहां है तो बस जीवन की सच्चाई, रिश्तों की गर्माहट और भावनाओं की गहराई। तो श्रोताओं, आखिर कौन है वो जिसने यह साबित किया कि अच्छी कहानी किसी बड़े बजट की मोहताज नहीं होती? तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं मशहूर निर्माता निर्देशक आनंद एल राय के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे निर्देशक, एक ऐसे निर्माता जिन्होंने ये साबित किया कि अच्छी कहानी कभी भी किसी बड़े बजट की मोहताज नहीं होती। श्रोताओं, भारतीय फिल्म उद्योग में आनंद एल राय का नाम उन निर्देशकों में लिया जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नई संवेदनशीलता दी। उन्होंने ये सिखाया और दिखाया कि छोटे शहरों की कहानियां भी बड़े पर्दे पर उतनी ही प्रभावशाली हो सकती हैं जितनी किसी महानगर की। उनकी फिल्मों में हास्य है, प्रेम है, संघर्ष है, परिवार है और सबसे बढ़कर मानवीय भावनाओं की सच्चाई है।

इस मीठे से गीत के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं मशहूर निर्माता निर्देशक आनंद एल राय। आनंद एल राय का जन्म 28 जून 1971 को दिल्ली में हुआ। उनका बचपन एक सामान्य भारतीय परिवार में बीता। परिवार में अनुशासन था लेकिन रचनात्मकता के लिए भी पर्याप्त स्थान था। बचपन से ही उन्हें लोगों को देखना, उनके व्यवहार को समझना और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना अच्छा लगता था। यही आदत आगे चलकर उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत बनी। श्रोताओं, आनंद एल रॉय ने दिल्ली में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। परिवार चाहता था कि वे एक सफल इंजीनियर बने, लेकिन उनके भीतर का कलाकार उन्हें बार बार सिनेमा की ओर बुलाता रहा। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका जो असली सपना है वो है कैमरा और कहानियों की दुनिया। और बस फिर क्या था, अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। यह सफर आसान नहीं था। फिल्म उद्योग में किसी एक नए व्यक्ति के लिए पहचान बनाना कठिन होता है, लेकिन आनंद एल राय ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। वहां उन्होंने कैमरा, पटकथा, कलाकारों के साथ काम करने की कला और निर्देशन की बारीकियां भी सीखी। कई वर्षों तक उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया। वे जानते थे कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। कई बार अवसर मिले, कई बार निराशा भी हाथ लगी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि अच्छा निर्देशक बनने से पहले एक अच्छा इंसान और अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। श्रोताओं, साल 2007 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म स्ट्रेंजर्स का निर्देशन किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं बन सकी, लेकिन फिल्म समीक्षकों ने उनके निर्देशन की सराहना की। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि सही कहानी एक दिन अवश्य दर्शकों तक पहुंचेगी।

एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और कार्यक्रम के आज के कलाकार हैं मशहूर निर्माता निर्देशक आनंद एल राय। श्रोताओं, यदि आनंद एल राय की फिल्मों को ध्यान से देखा जाए तो बनारस और उत्तर भारत की संस्कृति बार बार दिखाई देती है। उनका मानना है कि भारत की असली आत्मा छोटे शहरों और कस्बों में बसती है, इसीलिए उनकी फिल्मों में भाषा, पहनावा, त्योहार, रिश्ते और स्थानीय संस्कृति पूरी सच्चाई के साथ दिखाई देती है। आनंद एल राय की फिल्मों की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हमें दिखाई देती हैं वो हैं छोटे शहरों की वास्तविक कहानियां, मजबूत महिला पात्र, स्वाभाविक संवाद, भावनाओं से भरपूर दृश्य, हास्य और संवेदना का संतुलन, संगीत का प्रभावी उपयोग और साधारण लोगों को इस तरह से दिखाना कि उनके असाधारण सपने दर्शकों तक पहुंचे, और इन्हीं गुणों के कारण उनकी फिल्मों की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है।

श्रोताओं, साल 2011 में उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु रिलीज हुई। इस फिल्म ने भारतीय निर्देशकों का दिल जीत लिया, माफ कीजिएगा, भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया। इसमें छोटे शहरों की संस्कृति, परिवार, हास्य, प्रेम और मानवीय रिश्तों को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया। फिल्म के संवाद, संगीत और निर्देशन की खूब प्रशंसा हुई। इस फिल्म ने आनंदल राय को हिंदी फिल्म उद्योग के प्रमुख निर्देशकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म तनु वेड्स मनु से ये अगला गीत।

श्रोताओं, 2013 में आई रांझणा बी.एल. राय के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। यह फिल्म केवल प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसे युवक की कहानी थी जो प्रेम, त्याग और संघर्ष के बीच अपना रास्ता ढूंढता है। फिल्म के संवाद, संगीत और निर्देशन ने इसे यादगार बना दिया। विशेष रूप से बनारस के घाटों और गलियों का चित्रण दर्शकों के मन में बस गया। निर्देशन के साथ साथ उन्होंने निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने नए निर्देशकों और नई कहानियों को अवसर देने का निर्णय लिया। उनके प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस ने कई अलग विषयों पर आधारित फिल्मों का निर्माण किया और नए प्रतिभाशाली फिल्मकारों को मंच दिया। आनंदलाल राय हमेशा नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के पक्षधर रहे हैं। वे मानते हैं कि भारतीय सिनेमा तभी आगे बढ़ेगा जब नए लेखक, निर्देशक और कलाकारों को अवसर मिलेगा, और इसी सोच के कारण वे केवल सफल फिल्मकार ही नहीं बल्कि नए कलाकारों के मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। उनकी सोच के बारे में यदि बात की जाए तो आनंद एल राय का मानना है कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। उनकी लगभग हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश अवश्य मिलता है। वे दर्शकों को उपदेश नहीं देते बल्कि कहानी के माध्यम से सोचने पर मजबूर करते हैं।

के अंतर्गत आज आपने और हमने मिलकर तय किया आनंद एल राय के जीवन का सफर। एक मशहूर निर्माता और निर्देशक जिन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई एक अच्छी कहानी बड़े बजट की मोहताज नहीं होती है। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। मिलेंगे कल एक नए सफर में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करते हैं कुछ समसामयिक विषयों पर, तो आज जो समसामयिक विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है विश्व सोशल मीडिया दिवस। जी हाँ, आज आप और हम सभी मिलकर मना रहे हैं विश्व सोशल मीडिया दिवस। और श्रोताओं, अभिव्यक्ति और सृजनशीलता प्रदर्शन का एक सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। जी हाँ, शब्दों को मिल गए पंख, विचारों को नई उड़ान, सोशल मीडिया बन गया हर मन की पहचान। कहीं ज्ञान की रोशनी, कहीं कला का विस्तार, सृजन की इस दुनिया में हर प्रतिभा है साकार। जी हाँ श्रोताओं, आज का युग डिजिटल युग है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया हमारी हथेली पर सिमट आई है। कुछ दशक पहले तक अपने विचारों को हजारों लोगों तक पहुंचाना केवल समाचार पत्रों, रेडियो या टेलीविजन जैसे सीमित माध्यमों से संभव था, लेकिन आज सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने और दुनिया से जुड़ने का अवसर दिया है। और यही कारण है कि आज सोशल मीडिया केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति, संवाद, रचनात्मकता, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। तो श्रोताओं, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व सोशल मीडिया दिवस के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

है बिना किसी बड़े मंच के अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सके। आज कोई विद्यार्थी अपनी कविता साझा कर सकता है, कोई किसान अपनी समस्या बता सकता है, कोई कलाकार अपनी कला दिखा सकता है, तो कोई शिक्षक अपना ज्ञान बांट सकता है, कोई लेखक अपनी कहानी प्रकाशित कर सकता है। तो यानी कि अब अभिव्यक्ति केवल प्रसिद्ध लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई है। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सृजनशीलता का एक नया मंच है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होती ही है। पहले अवसरों की कमी के कारण अनेक प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन सोशल मीडिया ने लाखों कलाकारों को पहचान दिलाई है। आज कोई मधुर गीत गाकर प्रसिद्ध हो रहा है, कोई चित्रकारी से लोगों का दिल जीत रहा है, कोई नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, तो कोई विज्ञान के प्रयोग साझा कर रहा है, कोई योग सिखा रहा है, कोई खाना बनाना सिखा रहा है, कोई लोक संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहा है। और इस प्रकार सोशल मीडिया ने सृजनशीलता को नई उड़ान दी है। श्रोताओं, आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का मंच नहीं रहा है, यह शिक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। ऑनलाइन व्याख्यान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, भाषा सीखना, संगीत, चित्रकला, कंप्यूटर विज्ञान, गणित और अनेक विषय आज सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से सीखे जा सकते हैं। विशेषकर कोविड-19 के समय सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हाँ श्रोताओं, तो कार्यक्रम अभी जारी है और कार्यक्रम में ऐसे ही हम बात करते रहेंगे आपसे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक और गीत।

जी हाँ श्रोताओं, तो हम बात कर रहे हैं आज विश्व सोशल मीडिया दिवस के बारे में। एक ऐसा मंच जिसने लाखों लोगों को अवसर प्रदान किया। श्रोताओं, सोशल मीडिया दुनिया के अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृति को जोड़ता है। आज कोई व्यक्ति भारत में बैठकर अमेरिका, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया के लोगों से संवाद कर सकता है। लोग नई भाषाएं, नई परंपराएं और नई सोच को समझ पा रहे हैं। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा है। किसी भी सामाजिक अभियान को सफल बनाने में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, इसको देखा जाए तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचता है कि हमें भारत में कैसे स्वच्छता का अभियान चलाना है। इसके अलावा बात की जाए पर्यावरण संरक्षण की, या जल बचाओ, बेटी बचाओ, रक्तदान, अंगदान, मतदान जागरूकता या आपदा सहायता, इन सभी अभियानों को सोशल मीडिया ने जन जन तक

मचाया है। जी हाँ, और इसके अलावा यदि बात की जाए लोगों के लिए, सोशल मीडिया एक वरदान से कम नहीं है। आज हजारों छोटे व्यापारी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जैसे कि घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित वस्तुएं, घरेलू भोजन, कपड़े, आभूषण, कला सामग्री और बहुत सी अन्य चीजें, और इन सबको सोशल मीडिया ने एक नया बाजार दिया है। इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। आज अनेक युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, कंटेंट निर्माण कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, फिल्म निर्माण सीख रहे हैं, संगीत और अभिनय में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। यह मंच युवाओं को ऊर्जा और नवाचार की नई शिक्षा भी देता है। और श्रोताओं, इसके अलावा आज समाचार जो बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचता है, किसी भी घटना की जानकारी जो आपको कुछ ही मिनट में दुनिया में कहीं भी बैठकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी प्राप्त करने का जो जरिया है वो है सोशल मीडिया, जो कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में या विदेश तक आप तक किसी भी जानकारी को कुछ ही मिनटों में पहुंचा देता है। तो आज आपसी बातचीत का एक माध्यम, सशक्त माध्यम कहा जाए तो बन चुका है सोशल मीडिया।

जी हाँ श्रोताओं, मन का रेडियो जरूर सुनना चाहिए, और लेकिन चैनल कोई दूसरा ट्यून नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने ट्यून किया है इस समय 1530 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र, और इस समय आप हमसे चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही आवश्यक समसामयिक विषय पर, जो है विश्व सोशल मीडिया दिवस, और कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR और नई डिजिटल तकनीकों के साथ सोशल मीडिया और अधिक प्रभावशाली होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन और संचार, हर क्षेत्र में इसकी भूमिका और बढ़ेगी। लेकिन ये तभी सार्थक होगा जब इसका उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हर तकनीक के भी कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के भी कुछ नकारात्मक पक्ष हैं, जैसे कि फर्जी समाचार, अफवाहें, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, समय की बर्बादी, मानसिक तनाव और डिजिटल लत, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग। यदि इनसे सावधान ना रहा जाए तो सोशल मीडिया लाभ की जगह हानि भी हमें पहुंचा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसके नकारात्मक पक्षों का भी हम अपने जीवन में सोशल मीडिया मंच का प्रयोग करते समय ध्यान रखें। अब इनका जिम्मेदार उपयोग हम कैसे करें, तो हम आपको बता दें कि केवल प्रमाणित जानकारी ही को आप सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करें, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, दूसरों का सम्मान करें, निजी जानकारी को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखें, समय का संतुलित उपयोग करें, सकारात्मक और प्रेरणादायी सामग्री देखें, और डिजिटल शिष्टाचार जो है उसका आप हमेशा पालन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में जो ये सोशल मीडिया है ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगी। जी हां श्रोताओं, और सोशल मीडिया ने आज के समय में युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान दी है। आज अनेक युवा बिना किसी बड़े संसाधन के केवल अपनी मेहनत और रचनात्मकता के बल पर ही अपनी पहचान बना रहे हैं। कोई शिक्षा से जुड़ा कंटेंट बना रहा है, तो कोई विज्ञान को सरल भाषा में समझा रहा है, तो कोई पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। सोशल मीडिया ने अवसरों को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। तो श्रोताओं, सोशल मीडिया केवल एक तकनीकी नहीं है, बल्कि विचारों का एक महासागर है। यह वह मंच है जहां एक छोटी सी प्रेरक बात लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसीलिए हमें इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, रचनात्मकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण के लिए भी करना चाहिए। तो श्रोताओं, आशा है कि आप सभी हमारे द्वारा जो संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं आज विश्व रेडियो दिवस पर, वो आप समझेंगे कि हमें किस तरह से इस मंच का, इस सामाजिक मंच का उपयोग करना है, और इसके द्वारा दिए जाने वाले केवल सकारात्मक पक्षों पर ही हमें ध्यान देना है, नकारात्मक पक्षों से हमें दूर रहना है।

श्रोताओं, आशा है कि आप तक हमारा संदेश पहुंचेगा कि आप केवल सकारात्मक और प्रेरणादायक जो सामग्री है सोशल मीडिया द्वारा उसको ही ग्रहण करेंगे, डिजिटल शिष्टाचार का पालन करेंगे और दूसरों का सम्मान करेंगे। तो श्रोताओं, जाते जाते अब हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि चलो चलो शब्दों से दीप जलाएं, नफरत की हर दीवार गिराएं, ज्ञान सृजन का हो विस्तार, यही बने अपना संस्कार, सोशल मीडिया शक्ति बने, हर प्रतिभा की भक्ति बने, सत्य सद्भाव और सम्मान, यही हो इसका सच्चा मान, अभिव्यक्ति को मिले नई दिशा, सृजन से महके हर आशा, डिजिटल युग का यही संदेश, जुड़े दिलों से बढ़े ये देश। जी हाँ श्रोताओं, कलम से जो बात कभी सीमित रह जाती थी अब वह हर दिल तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया लेकिन तभी वरदान कहलाएगा जब हर अभिव्यक्ति में सत्य, संवेदना और सजन मुस्कुराएगा। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसके अंतर्गत हमने बात की विश्व सोशल मीडिया दिवस पर। मिलेंगे कल एक नए समसामयिक विषय पर, करेंगे आपसे कुछ चर्चाएं और सुनाएंगे कुछ आपको मीठे मीठे गीत। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
3: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
3: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
3: जी श्रोताओ, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
3: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगल

0: जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोता, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे कोई खो देंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
0: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन, कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
5: क्या
6: क्या
5: क्या?
4: पूजा सब तक कोयल गाए,
5: नीचा
4: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
2: हाँ हाँ यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
6: हईशा
4: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है। काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
4: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी।

0: बस रट ही पकड़ ली।
1: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: इसकी यही सजा हो,
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: गाँव गाँव, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँव
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
0: खाओ, खाओ, खाओ।
4: तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोचकर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: आओ, कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: क्या पता?
1: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
0: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
0: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे नई फिल्मों से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म फुकरे से ये गीत, जिसमें अपनी आवाज दी है सोना महापात्रा ने, और इस गीत में संगीत निर्देशन है राम संपत का।

कार्यक्रम नई तरानी का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर आप सुनेंगे जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाजों में। संगीत निर्देशन है संजीव दर्शन और इस गीत को लिखा है संदीप नाथ ने, और इस गीत को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अमावस से।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे रेखा भारद्वाज की आवाज में फिल्म दिल्ली 6 से, जिसमें संगीत निर्देशन है AR रहमान का और इस गीत के गीतकार हैं प्रशून जोशी।

कार्यक्रम नए तराने का ये अगला गीत आपके रेडियो सेट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के जरिए आप सुनने जा रहे हैं मिथुन अरिजीत सिंह और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में, जिसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सैटेलाइट शंकर से।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र मीडियम वेव 196.1 मीटर पर, और इस समय आप ले रहे हैं आनंद नए तरानों का आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सब कुशल मंगल से सोनू कक्कड़ और वंदना सक्सेना की आवाजों में।

Surtout un karikram नई तरह का अगला ये गीत आप सुनेंगे फिल्म तेरी शादी बजाएंगे बैंड हम फिल्म से जिसमें अपनी आवाज दी है सोनू निगम ने। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई तरह आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरबजीत से शैला हाडा की आवाज़ में, जिसमें संगीत निर्देशन भी शैला हाडा का है और इस गीत को लिखा है AM तुराज ने।

और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 1:10 पर श्रोता सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आखिरी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की

0: जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of services at Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. He added that with UPI now live in Greece, eligible customers can transfer money instantly, securely and seamlessly. Army Chief General Upendra Dwivedi today said the Indian Army derives its strength not from any single individual but from the unwavering faith of its soldiers, commanders, veterans, families and the citizens of the country. General Dwivedi said this while relinquishing the appointment as the Chief of Army Staff in New Delhi today. He emphasized that serving in the Indian Army for over 4 decades has been his greatest privilege.
0: भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने
3: आर स्टेडफास्ट सोल्जर्स रिमेन्स डिप्लॉयड अक्रॉस माउंटेन्स डेजर्ट ग्लेशियर्स फॉरेस्ट एंड चैलेंजिंग बॉर्डर रीजन सेफ गार्डिंग द नेशन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल करेज एंड रेजिलियंस इन डाइवर्स ऑपरेशनल एनवायरमेंट्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू यूनाइटेड नेशन मिशंस देयर अनवेवरिंग डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म एग्जाम्प्लीफाइज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस Operation Sindoor stands as a testament to their valor, operational excellence and steadfast commitment to the nation.
0: Operation Sindoor iska jwalant udaharan.
2: Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has emphasized that the vision of Vikasit Bharat cannot be achieved without developing the agriculture sector. Addressing the closing ceremony of Khet Bachao Abhiyan in Hisar, Haryana today, Mr. Chauhan informed that the government is working on developing a mobile app that will provide information regarding soil and the amount of fertilizer it requires. He urged farmers to use fertilizers and insecticides in their farms rationally in order to maintain the the health of the soil. He also advised farmers to adopt

0: मग़रिबी उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल जंगी यादगार त्रिशूल इंडियन डिफेंस म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने मुरादाबाद में तरक्याती कामों, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के ताल्लुक से एक डिवीजनल जायजा मीटिंग में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दीं। रियासती हुकूमत ने ई रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से मुतालिक अपने साबका हुक्म को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। स्टैंप और कोर्ट फीस व रजिस्ट्रेशन के वजीर ममलिकत रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह फैसला एडवोकेट और डीड राइटर्स की खदशात और मफादात की रोशनी में किया गया है।
1: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑन नए रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम किस्ते बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/26 का जो आया था उसको हम निरस्त करते हैं।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कल 3 जबानों की पॉलिसी पर रहनुमा खतूत जारी किए। बोर्ड ने कहा कि मौजूदा दर्जा 10 बैच को नई जबान की पॉलिसी पर अमल करने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि दर्जा 7, 8 और 9 के तलबा को दर्जा 10 तक पहुंचने पर उनकी तीसरी जबान में बोर्ड के इम्तहानात देने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि क्लास के लिए मुनासिब वसायल बर वक्त दस्तियाब कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इम्तिहान 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। गुज़िश्ता 36 घंटों में रियासत के कुछ अज़ला में हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। पीलीभीत जिले में कल रात से हो रही बारिश से वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर समेत कुछ दूसरे अज़ला में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज़ में रियासत में मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमा ने आज रियासत के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही मेरी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज ना मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। चर्चा असल जिंदगी बनाम सोशल मीडिया पर। बहनों, आज के दौर में सोशल मीडिया हम सबकी जिंदगी से इस कदर जुड़ चुका है कि सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले तक स्क्रीन पर बने रहना, मानो ये कई लोगों की आदत बन गई है। और यहीं से शुरू होती है आज की ये चर्चा। बहनों, असल जिंदगी में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, असफलताओं का सामना करता है और छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढता है। वहीं सोशल मीडिया पर अक्सर केवल सफलता, खुशियाँ और चमक दमक दिखाई जाती है। लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा साझा करते हैं, जिससे देखने वालों को लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी उनसे बेहतर है। यही तुलना कई बार तनाव, हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन जाती है। महिलाओं की बात करें बहनों, तो सोशल मीडिया ने हमें अपनी प्रतिभा दिखाने, स्वरोजगार शुरू करने और अपनी पहचान बनाने का शानदार मंच तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ दिखावे की होड़, अवास्तविक सौंदर्य मानकों का दबाव और दूसरों जैसी जिंदगी पाने की चाह भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया का उपयोग प्रेरणा के लिए करें, ना कि तुलना के लिए। और बहनों, बच्चों और युवाओं पर भी

0: इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि वे वास्तविक रिश्तों, पढ़ाई, खेल और परिवार से अधिक समय मोबाइल पर बिताने लगें, तो उनका सामाजिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए डिजिटल दुनिया का वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। बहनों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, एक जरूरी हिस्सा, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी नहीं। असली खुशी लाइक्स और फॉलोअर्स में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए पलों, सच्चे रिश्तों, अच्छे स्वास्थ्य और आत्मसंतोष में ही होती है। तो ये तो थी आज की चर्चा, असल जिंदगी बनाम सोशल मीडिया। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: बहनों, कुछ तुम कहो कुछ हमें, आज का विषय बहुत आम भी है और बहुत खास भी। हम सब दिन की शुरुआत और अंत मोबाइल से करते हैं, लेकिन एक सवाल मन में उठता है, क्या सोशल मीडिया हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है या फिर धीरे धीरे हमें संवेदनहीन बना रहा है? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रगति जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: मैम, आपकी नज़र में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक?
3: दोनों ही है। सकारात्मक इसलिए कि आज की महिलाएं अपनी आवाज खुलकर रख पा रही हैं,
2: जी,
3: अपनी पहचान बना पा रही हैं। लेकिन नकारात्मक ये है कि हम रील्स में हंस तो लेते हैं, पर सामने बैठे इंसान के दर्द को महसूस करना भूलते जा रहे हैं।
2: जी,
3: लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ में संवेदनाएं कहीं पीछे छूट रही हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपनी संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं। अच्छा मैम, कई बार देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन घर परिवार में चुप रहते हैं। आप इसे कैसे देखती हैं?
3: ये आज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम स्टेटस में रिश्तों पर लंबी बातें लिख लेते हैं,
2: जी,
3: पर असल रिश्तों से बात करने का वक्त नहीं निकालते। बच्चे माँ बाप के साथ बैठे हैं, लेकिन सबकी नज़र स्क्रीन पर है। यहीं से संवाद टूटता है और दूरी बढ़ती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या समाधान ये है कि सोशल मीडिया से दूरी बना ली जाए?
3: नहीं, दूरी नहीं, संतुलन जरूरी है। सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, हम उसके हाथ में नहीं होने चाहिए। अगर हम तय करेंगे कि कब फोन रखना है और कब अपनों को समय देना है, तो तकनीक भी हमारी साथी बन सकती है।
2: बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं की भूमिका को आप यहाँ कैसे देखती हैं?
3: महिलाएं घर की पहली गुरु होती हैं।
2: जी,
3: अगर माँ खुद मोबाइल से ज्यादा बच्चों को अहमियत दे, अगर वो बच्चों को सिखाए कि सिर्फ पोस्ट नहीं, व्यवहार भी खूबसूरत होना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी ज्यादा संवेदनशील होगी।
2: बिल्कुल ठीक कही आपने ये बात, और बहुत ही सार्थक बात है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसमें खो जाना जरूर नुकसानदेह है। जरूरत है स्क्रीन से नजर हटाकर एक दूसरे की आंखों में देखने की। इसी संदेश के साथ आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर।
0: तो बहनों, चूंकि आज विश्व सोशल मीडिया दिवस है, तो आज हमने की बात सोशल मीडिया की हमारी जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभावों की। अब चलते हैं अगले सेगमेंट पर और करते हैं आपको अप टू डेट। आज मैं आपको अप टू डेट करूंगी अंतरिक्ष में महिलाओं की उड़ान से। बहनों, एक समय था जब अंतरिक्ष की दुनिया को केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज महिलाएं न केवल अंतरिक्ष की उड़ान भर रही हैं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा भी तय कर रही हैं। अब भारत की बेटी कल्पना चावला ने जब दुनिया को बड़े सपने देखने का साहस दिया था, वहीं सुनीता विलियम्स को ही देख लीजिए। उन्होंने अपने लंबे अंतरिक्ष मिशनों से और स्पेस वॉक के रिकॉर्ड से ये साबित किया कि हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। 2025 में उनका सुरक्षित पृथ्वी पर लौटना पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का क्षण रहा। आज अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही एक नाम और भी है, रितु करधल, जिनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मुथैया वनीता, जो चंद्रयान 2 की परियोजना निदेशक रहीं, उन्होंने भारत के चंद्र मिशन का सफल नेतृत्व किया। इसी तरह और भी बहुत से नाम हैं, जैसे नंदिनी हरिनाथ, जिन्होंने भारत के मंगल मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

और युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बनी। अभी भारतीय मूल की ही अंतरिक्ष यात्री शौना पांड्या भी अंतरिक्ष चिकित्सा और निजी अंतरिक्ष मिशनों के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं बहनों, और 2026 में उनके अंतरिक्ष मिशन की तैयारी ने वैश्विक स्तर पर सबका ध्यान आकर्षित किया हुआ है। विदेशों में भी ऐसे बहुत से हैं महिलाएं हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, जैसे जैसिका मायर और क्रिस्टीना कोच ने पहली बार पूरी तरह महिला टीम के रूप में स्पेस वॉक का इतिहास रचा, तो वहीं पैगी विटसन आज भी सबसे अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्रियों में गिनी जाती हैं और निजी अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व कर रही हैं। वास्तव में बहनों, इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जब संकल्प मजबूत हो तो धरती से लेकर चांद, मंगल और उससे भी आगे तक हर मंजिल हासिल की जा सकती है। अंतरिक्ष में महिलाओं की ये उड़ान कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की नई कहानी लिख रही है। आज हमें ज़रूरत है तो बस इतनी कि अपनी बच्चियों को हौसलों के पंख दें, उन्हें उनके हिस्से का आसमान दें जिससे वो भी ये उड़ान तय कर सकें। ये थी बात आज अप टू डेट में, इतनी ही। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।

0: बहनों, कहा जाता है कि बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है और उसकी पहली गुरु उसकी माँ। माँ केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि अपने स्नेही व्यवहार और संस्कारों से बच्चे के व्यक्तित्व को और भी मजबूत करती है, वो मजबूत नींव रखती है। यही संस्कार आगे चलकर उसे एक जिम्मेदार, संवेदनशील और आदर्श नागरिक भी बनाते हैं। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय, बच्चों को संस्कारित करने में माँ की भूमिका पर हमारे साथ अपने विचार साझा कर रही हैं वार्ताकार डॉक्टर शैली अग्रवाल।
1: प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करने में परिवार का बहुत योगदान होता है। परिवार में जन्म लेकर मनुष्य बड़ा होता है। परिवार के बीच ही रहकर मनुष्य संस्कार सीखता है। संस्कारित होने के बाद मनुष्य अच्छे बुरे का अंतर सरलता से जान जाता है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संस्कारवान व्यक्ति का बातचीत करने का ढंग ही अलग होता है। उसकी समाज में अलग इज्जत होती है। बच्चों को परिवार से लेकर स्कूल कॉलेज तक संस्कार सिखाए जाते हैं जो आम जिंदगी में बहुत काम आते हैं। माँ की विरासत है अच्छे संस्कार, पिता की विरासत है एक प्यारा सा परिवार। बच्चों को माँ से जो अच्छे संस्कार मिलते हैं वो सारी जिंदगी उसका साथ देते हैं, कभी उसे रास्ता भटकने नहीं देते, मुसीबत में सही रास्ता दिखाते हैं। हर बच्चा अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता है जिन्हें वो कभी नहीं भूलता। हम जब भी अपना बचपन याद करते हैं तो सबसे पहले माँ से जुड़ी बातें ही याद आती हैं, क्योंकि वह माँ ही है जो हमारे बचपन का सबसे ज्यादा समय हमारे साथ बिताती है। किसी ने कहा है, जननी जड़े तो भक्त जन, कामदाता का सूर। अर्थात, हे माँ, यदि तुझे जन्म देना है तो भक्त, दानी या वीर को जन्म देना। संतान की प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है। आदर्श माताएं अपनी संतान को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। माँ के जीवन और उसकी शिक्षा का बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। माँ संतान में बचपन से ही सुसंस्कारों की नींव डाल सकती है। संतान की जीवन वाटिका को सद्गुणों के फूलों से सुशोभित करने से खुद माता पिता का जीवन भी सुवासित और आनंदमय बन जाएगा। संतान में यदि दुर्गुण के कांटे पनपेंगे तो वे माता को भी चुभेंगे और शिशु माता एवं पूरे परिवार के जीवन को खिन्नता से भर देंगे। नन्ना सा बालक एक कोमल पौधे जैसा होता है, उसे चाहे जिस दिशा में मोड़ा जा सकता है। अतः बाल्यकाल से ही उसमें शुभ संस्कारों का सिंचन किया जाए तो भविष्य में वही विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होकर भारतीय संस्कृति के गौरव की रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। किसी भी देश का भविष्य वहां की संस्कारी बाल पीढ़ी पर निर्भर करता है। वास्तव में खनिज, वन, पर्वत, नदी आदि देश की सच्ची संपत्ति नहीं है, अपितु ऋषि परंपरा के पवित्र संस्कारों से संपन्न तेजस्वी संतानें ही देश की सच्ची संपत्ति हैं और वर्तमान समय में देश को इस संपत्ति की अत्यंत आवश्यकता।

0: चिकित्सा विज्ञान के अनुसार गर्भ में शिशु किसी चैतन्य जीव की तरह व्यवहार करता है, वह सुनता और ग्रहण भी करता है। माता के गर्भ में आने के बाद से गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जाता है। हमारे पूर्वज इन सब बातों से भली प्रकार परिचित थे, इसलिए उन्होंने गर्भाधान संस्कार को हमारी भारतीय संस्कृति में कराए जाने वाले 16 संस्कारों में से एक संस्कार मानकर उसे पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करने की प्रथा प्रचलित की थी। माता का एक एक क्षण व बच्चे का एक एक कण एक दूसरे से जुड़ा है। माता का खाना पीना, आदतें, इच्छाएं आदि भी संस्कार के रूप में उसकी संतान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो समयानुसार परिलक्षित होते हैं। इस अवस्था में माता जो भी देखती है, सीखती है, महसूस करती है, इच्छा करती है, उसके अनुरूप ही उसके बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण बीज रूप में हो जाता है, जो समयानुसार विकसित होता है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बच्चों पर ही है। बच्चे ही समाज एवं राष्ट्र का भविष्य है। यदि उन्हें सवारा जा सके, इन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, तो निश्चित ही परिवार, समाज, देश तथा विश्व का कल्याण हो सकता है। आज पैदा होने वाले बच्चे कल भविष्य में युवा बनकर देश की बागडोर एवं अन्य जिम्मेदारियां संभालेंगे। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए धन संपदा को एकत्रित करते हैं, उसके विकास के लिए बहुत चिंता करते हैं। लेकिन यदि माता पिता अपने बच्चों को विरासत में अच्छे संस्कार दे सकें, तो फिर उन्हें कुछ और खास चीजें देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसी संतानें न केवल अपना भविष्य सुधार लेंगी, बल्कि औरों के लिए भी साधन सुविधाएं जुटा लेंगी। बच्चे को संस्कारित करने में माँ की अहम भूमिका होती है। माँ को अपने बच्चे में यह संस्कार पैदा करने चाहिए कि वह ईश्वर में विश्वास रखे। ईश्वर में आस्था रखने से सही काम करने की प्रेरणा मिलती है। उसको यह विश्वास दिलाए कि ईश्वर सब कुछ देखता है, अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रत्येक बच्चे को यह संस्कार देना भी चाहिए कि वह अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि माता पिता ही उसके पथ प्रदर्शक होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले माता पिता की राय अवश्य जाने। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे के अंदर सत्य बोलने की आदत डाले। इसके लिए स्वयं माता पिता को भी इस रास्ते पर चलना होगा। ईमानदारी की आदत डालनी होगी। उनको यह भी बताना होगा कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए आप उसे किसी कहानी के माध्यम से या किसी उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी। अपने बच्चे के अंदर सहयोग और दूसरों की मदद करने के संस्कार भी बचपन से ही डालने चाहिए। अपने बच्चे को छोटी उम्र से ही अपने साथ काम पर लगाएं या उसको बताते रहें कि परिवार में सभी एक दूसरे की मदद से कार्यों को करें। घर में जितने भी सदस्य हैं, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार सभी कामों को विभाजित कर दें, जिससे उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा और धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करना उसकी आदत में शामिल हो जाए। अपने बच्चे के अंदर यह संस्कार डालना भी आवश्यक है कि वह अपने चरित्र के प्रति सजग रहे, क्योंकि एक बार चरित्र नष्ट होने पर वह पुनः ठीक नहीं हो सकता। अपने बच्चों को घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाएं, उनकी सेवा करना, उनकी बात मानना, उनकी मदद करना तथा उनका सम्मान करना उनको आना चाहिए। बालक देश का भविष्य, विश्व का गौरव और अपने माता पिता की शान है। उसके अंदर सामर्थ्य का असीम भंडार है, जिसे प्रकट करने के लिए जरूरी है उत्तम संस्कारों का सिंचन। यदि उन्हें ठीक प्रकार से गढ़ा नहीं गया, उनमें सही समझ पैदा नहीं हुई, तो उनका जीवन कुंठित और रुग्ण हो जाएगा। एक सुसंस्कारित बच्चा ही अपने माता पिता के नाम को उज्जवल एवं प्रकाशित कर सकता है। और अगर हर घर में सुसंस्कारित बच्चे पैदा होने लगे, तो निश्चित रूप से धरती के घर घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाएगा।
1: तो बहनों, इस वार्ता ने हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देना भी बहुत जरूरी है, और इस दिशा में माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो

बहनों, अभी हम बात संस्कारों की कर ही रहे हैं, तो इसी कड़ी में चलते हैं अगले सेगमेंट परवरिश रिश्ते नाते पर, जहां आज हम बात करेंगे शिक्षा के साथ जरूरी है संस्कार। बहनों, अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा इंसान को योग्य बनाती है, लेकिन संस्कार उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि शिक्षा के साथ संस्कार ना हो तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। क्योंकि बहनों, ये संस्कार ही तो हैं जो बच्चों को बड़ों का सम्मान करना, छोटों से स्नेह करना, सच बोलना, ईमानदार बनना, दूसरों की मदद करना और हर परिस्थिति में विनम्र रहना सिखाते हैं, और यही गुण आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की पहचान बनते हैं। लेकिन बहनों, बच्चे केवल हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी सीखते हैं। यदि घर में प्रेम, सम्मान, अनुशासन और संवेदनशीलता का वातावरण होगा तो वही मूल्य उनके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को समय देना, उनसे खुलकर बात करना और स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना सबसे बड़ी परवरिश है। याद रखिए, अच्छी डिग्री जीवन में सफलता तो दिला सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार सम्मान और विश्वास दिलाते हैं। इसलिए बच्चों को केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों में भी समृद्ध बनाइए। बच्चों को इतनी शिक्षा जरूर दीजिए कि वे सफल बन सकें, और इतने संस्कार भी दीजिए कि उनकी सफलता से परिवार और समाज दोनों ही गौरवान्वित हों। क्योंकि

इच्छा भविष्य बनाती है और संस्कार उस भविष्य को सुंदर बनाते हैं। ये तो थी बातें आज परवरिश रिश्ते नाते में। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अब हम चूंकि इतनी सारी बातें कर चुके हैं और इस सारी बातचीत में भला हम अपने स्वास्थ्य को कैसे भूल सकते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य में आज मैं आपसे करने वाली हूँ बात कमज़ोर इम्यूनिटी और बीमारियों पर। बहनों, हमारा शरीर ना एक किले की तरह है और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी सुरक्षा दीवार। जब ये मजबूत होती है तो शरीर कई संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। लेकिन जब ये इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण, बार बार बुखार, थकान और बहुत सारी अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पर बहनों, कमज़ोर इम्यूनिटी के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन की कमी, पर्याप्त नींद ना लेना, लगातार तनाव, शारीरिक गतिविधि का अभाव या फिर अस्वस्थ जीवन शैली। इसलिए केवल बीमारी का इलाज ही नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक रक्षा शक्ति को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। हम डॉक्टर के पास भागे भागे तो चले जाते हैं, लेकिन हम अपने शरीर की नींव में छुपी चीज़ों को एक बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो होती है कि हम अपने शरीर को मजबूत नहीं बना रहे, उसकी इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं देते। इसके लिए अपने भोजन में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी शामिल करें। नियमित योग, व्यायाम, सुबह की सैर और 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बहनों। साथ ही हाथों की सफाई, समय पर टीकाकरण और डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य जांच भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, मजबूत इम्यूनिटी किसी एक दवा से नहीं बल्कि रोज़ की अच्छी आदतों से बनती है। तो बहनों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए अपने शरीर की आवाज़ सुनिए, संतुलित जीवन शैली अपनाइए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये वो खजाना है जो एक बार खो गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो इस पर ध्यान दीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, स्वस्थ रहिए। ये तो थी बात आज हमारा स्वास्थ्य में। इतनी ही, सुनते हैं ये गीत।

बहनों, आज दादा भाई नौरो जी की पुण्यतिथि है। आज हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरो जी को, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरो जी ने सबसे पहले अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों का गहन अध्ययन करा और अपनी प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी के माध्यम से भी यह बताया कि किस प्रकार भारत की संपत्ति लगातार ब्रिटेन भेजी जा रही है। उनके विचारों ने देशवासियों में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना को नई ऊर्जा दी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी। उन्होंने हर मंच पर भारत के अधिकारों, न्याय और स्वशासन की आवाज को बुलंद किया। दादा भाई नौरो जी का जीवन हमें सिखाता है बहनों कि ज्ञान, सत्य और तर्क के बल पर भी राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। उनकी दूरदृष्टि, ईमानदारी और देशभक्ति आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सशत सत नमन करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व कभी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। उनका जीवन भी एक ऐसी ही अमूल्य प्रेरणा है। तो ये तो थी आज बातें, हमारे घर संसार में इतनी ही। ध्यान रखिएगा बहनों कि इतनी सारी बातों में हमने आज जितनी भी बातें की, उनमें स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपने शरीर की आवाज़ सुनिए, संतुलित जीवन शैली अपनाइए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अपने घर को, अपने परिवार को खुशहाल बनाइए। और हाँ, ध्यान रहे कि भरपूर नींद ज़रूर लीजिए। साथ ही आज हमने अंतरिक्ष में महिलाओं की उड़ान को भी जाना। तो इतनी ढेर सारी बातें करने के बाद, चूंकि अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे को। नमस्कार।

संसार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:45 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलाकार रीता गांगुली द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें। पहली गजल जो आप सुनने जा रहे हैं उसके बोल हैं, आज की रात भी जरूरी है।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार रीता गांगुली द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें। प्रस्तुत है दूसरी गजल जिसके बोल है नजर उठा के जिससे।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की अगली गजल जो आप सुनने जा रहे हैं कलाकार रीता गांगुली की आवाज में, इसके बोल हैं तेरे करीब आके।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार रीता गांगुली द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें और कार्यक्रम था सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएल

0: जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय

0: कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूंका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर।

अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी गिरिजा देवी द्वारा राग मिश्र खमाज में गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आपने सुनी विदुषी गिरिजा देवी द्वारा राग मिश्र खमाज में गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आंखें से ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है रवि का और इस गीत को लिखा है साहिर ने।

और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं और अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म जान तेरे नाम से ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत के बोलों को लिखा है अजीज खान साहनी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म दिल तेरा आशिक से शीर्षक गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है समीर ने।

0: श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अगला गीत कुमार सानू की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म दिलवाले से। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है समीर ने।
1: कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: कम ऑन अरुण, कम ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शोला और शबनम से कविता कृष्णमूर्ति शब्बीर कुमार की आवाजों में। संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का और इस गीत को लिखा है अनजान ने।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में। संगीत निर्देशन है संजीव दर्शन का और इस गीत को लिखा है समीर ने और फिल्म का नाम है मोहब्बत।

और श्रोताओं, गाने के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं और इसी के साथ अब इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता

0: सतर्कता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चार दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग चार दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्तिपरक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनिएगा सोशल मीडिया का समाज पर सकारात्मक प्रभाव विषय पर कनक चौहान से वार्ता। शाम 6 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्य लोक का। आज के कार्यक्रम में पेड़ है जीवन का असली आधार, इनके बिना सुना है संसार विषय पर चर्चा सुनिएगा और वार्ताकार डॉक्टर रेवती लाल राजपूत से पशुओं से अधिकतम दुग्ध उत्पादन कैसे लें विषय पर सुनेंगे वार्ता। शाम 6:30 पर सुनेंगे ICC महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच केनिंगटन ओवल लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। इस मैच का प्रसारण आप मीडियम वेव पर सुन सकेंगे। बाकी आज के सभी कार्यक्रमों

का प्रसारण न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर जारी रहेगा। कार्यक्रम मजदूर मंडल में विश्व संसदीय दिवस विषय पर की जाएगी चर्चा और वार्ताकार रवि जायसवाल से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा हमारा घर और खुशहाली। समय 6:30। 7:10 पर राजीव शर्मा से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा उल्का पिंडों की रोचक दुनिया। कार्यक्रम विविधा में कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का समय रहेगा 7:31 और रात्रि 8 होगा देशभक्ति परक कार्यक्रम भारत भारती और 8:30 पर चित्रपट संगीत का लीजिएगा आनंद। रात्रि 10:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा शास्त्रीय संगीत। ये तो था आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास।

कल सुबह 6:25 मिनट पर सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन में काका साहब का लेकर के विचार। 6:35 मिनट पर श्री रामचरितमानस गान होगा, गायक कलाकार कोरस।

अभी आपने सुना आज की सांध्यकालीन सभा और कल के प्रातःकालीन सभा के प्रसारण का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म सुहाग से, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था और आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। अगली प्रस्तुति फिल्म चार धाम से है, रचना उदय शंकर पाणी की है, संगीत दिया है सुरेंद्र कोहली ने और आवाज़ें हैं अनुराधा पोडवाल और हरिहरन की।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साजी टंडन और परंपरा टंडन की आवाजों और संगीत से सजे इस भक्ति गीत को हमने लिया था फिल्म आदि पुरुष से। आलेख मनोज मुंतशिर का था। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। अगला भक्ति गीत फिल्म मल्ला रखा से है। आवाज मोहम्मद अजीज की है, संगीत अनु मलिक का और रचना राजेंद्र किशन की।

अभी आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, नई सोच की नई उड़ान, नए सपनों की पहचान और युवा मन की आवाज़, कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। तो आइए बातों और विचारों के सफ़र की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो बताइए ज़रा, कैसे हैं आप? मन में तो बिल्कुल यही आवाज़ आई होगी, है ये गर्मी। दोस्तों गर्मी तो बहुत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इससे निपटने के लिए ना तरीके भी अच्छे हैं, जैसे कि हमेशा हाइड्रेटेड रहना, यानी कि आप बीच बीच में ड्रिंक्स ब्रेक लेते रहिए और पानी पीते रहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और सवाल दोस्तों, इंडिया की 100वीं रामसर साइट कौन सी है? हाल ही में इसका अपडेट आया है दोस्तों, हम बात करेंगे इसके बारे में, आप ज़रा सोचिए, मनन कीजिए। वैसे दोस्तों आजकल ना हम लोग आए दिन अपने अखबारों में और कहीं ना कहीं न्यूज़ में ना जहाज़ों या नावों से जुड़ी खबरें ज़रूर पढ़ते हैं कि कहीं किसी देश ने किसी जहाज़ को रोक लिया, कहीं पर अटैक जैसे हालात हो गए, तो कहीं पर कुछ और। अब समझने वाली बात यह है कि दोस्तों ऐसे मामले जो है ना अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से जुड़े हुए हैं, पर

इन मामलों पर बातचीत कौन करता है, इसके समाधान कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होती है इट लॉस, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण। इटलॉस एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना साल 1996 में यूएन क्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत की गई थी। यूएन क्लॉज 1982 में बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्रों के उपाय, अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़े नियम तय करता है। अब समझते हैं कि इटलॉस किस प्रकार के मामलों को है देखता। दोस्तों, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें समुद्री सीमा विवाद, जहाज़ों की आवाजाही, समुद्री संसाधनों के संरक्षण, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे मामलों पर सुनवाई करती है। इटलॉस का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स है हैम्बर्ग, जर्मनी में, और यह यूएन क्लॉज के तहत समुद्र से जुड़े विवादों को सुलझाने वाली एक प्रमुख संस्थाओं में से एक है। इसकी संरचना के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इटलॉस में कुल 21 न्यायाधीश होते हैं। इनका चुनाव यूएन क्लॉज से जुड़े देशों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। न्यायाधीशों का चयन उनकी सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और समुद्री कानून की विशेषज्ञता के आधार पर होता है। दोस्तों, समुद्र हमारे लिए सिर्फ पानी का विस्तार नहीं है, यह व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और दुनिया के देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए ज़रूरी है कि समुद्रों का इस्तेमाल नियमों और आपसी सहयोग के साथ किया जाए। इटलॉस ऐसी ही व्यवस्था बनाने में हमें मदद करता है जहां देश समुद्र से जुड़े विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और बातचीत के जरिए सुलझा सके। अब समझते हैं कि इटलॉस से जुड़ी हुई हाल ही में भारत को कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय न्यायविद प्रोफेसर बिमल एन पटेल को साल 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए इटलॉस के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और वैश्विक कानूनी संस्थानों में भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी। प्रोफेसर बिमल एन पटेल का यह चुनाव समुद्री कानून, यूएन क्लॉज आधारित विवाद समाधान, महासागरीय शासन, समुद्री सुरक्षा, समुद्री संसाधनों में संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। दोस्तों, इटलॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति देश के समुद्री हितों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत की कानूनी और कूटनीतिक भूमिकाओं को भी मजबूती देती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अगर आप जब भी अगले बार अखबारों में, मैगजीन में या न्यूज़ में समुद्र से जुड़ी हुई कोई खबर सुने तो उस मामले की सुनवाई कहाँ होती है, इटलॉस जैसी संस्थाओं में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ज़रा गीत के संग अपना मन मनोरंजन कर लेते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों कितना अच्छा गाना सुना ना। बिल्कुल ऐसा एहसास हो गया कि हम कहीं ना कहीं किसी चढ़नी पर हैं और उन लहरों का जो है आनंद ले रहे हैं। चलिए आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको याद दिला देती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी है? क्या आपने सोचा इसका जवाब क्या हो सकता है? चलिए आप जानते हैं, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश का सुरहाताल पक्षी विहार। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सुरहाताल सिर्फ एक झील नहीं बल्कि प्रकृति का एक खूबसूरत खजाना है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहाताल एक महत्वपूर्ण वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि है। ये गंगा नदी के इलाके में बनी एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। साल 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पक्षी विहार का दर्जा दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर सुरहाताल इतना खास क्यों है? दोस्तों इसका एक बड़ा कारण है यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी। सुरहाताल सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है जिसके चलते सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से हजारों पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ सारस क्रेन, बार हेडेड गूज और कई अन्य खूबसूरत पक्षियों को देखा जा सकता है। लेकिन सुरहाताल की खासियत सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं है, यह कई तरह के पौधों, मछलियों और फिशिंग कैट जैसे दुर्लभ जीवों का भी घर है। अब सोचिए, अब किसी ऐसी प्राकृतिक जगह को रामसर साइट का दर्जा मिलता है तो इसका क्या फायदा होता है? जाहिर है उस जगह के संरक्षण और देखभाल पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि यह प्राकृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। दोस्तों सुरहाताल को रामसर साइट का दर्जा मिलना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही भारत अब एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाला देश बन गया है और दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों अब आपको आगे और ले चलते हैं और हमारे लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हेल्थ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वैसे दोस्तों आजकल हेल्थ

का, फिटनेस का क्रेज़ तो हम सभी में देखा जा सकता है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर रील्स डालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रील्स डालते हैं, पोस्ट वर्कआउट फोटोज़ डालते हैं, है कि नहीं है, जिम जाते हैं, प्रोटीन डाइट भी लेते हैं, बिल्कुल, और इससे अपने को खूब ज़्यादा हेल्दी भी बनाने की हम कोशिश जो है लगातार करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स हैं। हाँ जी, ये सिर्फ प्रोटीन पाउडर है जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की जो कमी है वो कंप्लीट होती है, यानी कि पूरी होती है, और कहीं ना कहीं हम एक्सेस प्रोटीन भी जो है गेन करते हैं। वैसे आपको पता है ना, प्रोटीन हमारे शरीर के विकास, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर की मरम्मत में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अपनी डाइट में प्रोटीन

0: तो सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स हैं।
1: हाँ जी, ये सिर्फ प्रोटीन पाउडर है जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन की जो कमी है वो कंप्लीट होती है, यानी कि पूरी होती है, और कहीं ना कहीं हम एक्सेस प्रोटीन भी जो है गेन करते हैं। वैसे आपको पता है ना, प्रोटीन हमारे शरीर के विकास, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर की मरम्मत में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए हम क्या क्या और चीज़ें खा सकते हैं? इसमें दालें हो सकती हैं, राजमा हो सकता है। छोले हो सकते हैं, चना हो सकता है, सत्तू, पनीर, टोफू, सोयाबीन और दही जैसे विकल्प हो सकते हैं। यानी कि हमें हमेशा प्रोटीन पाउडर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। अंडे, चिकन और मछली भी इन्हीं में शामिल हैं। तो अगर आप कुछ हेल्दी पीना चाहते हैं तो आप चने का सत्तू या फिर दूध, केले की स्मूदी या छाछ जैसे ऑप्शंस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन पाउडर की। अगर किसी की रोज़ की डाइट से प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स का रोल जो है वहाँ पर आ जाता है। या वे नियमित रूप से अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो विशेषज्ञों की सलाह से वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन जैसे सप्लीमेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, विशेषज्ञों की सलाह से। लेकिन अब देखिए ना, फिट रहना है तो सिर्फ हमें सप्लीमेंट्स पर तो निर्भर नहीं रहना है। हमें क्या करना है? बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हमारा जो शरीर है एकदम तंदुरुस्त जो है बना रहेगा। अरे, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही तो कह रही थी कि हमारी एक आदत है सोशल मीडिया, और जैसे हेल्थ हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वैसे कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर अपडेट्स डालना और उस पर रील देखना, ये भी कहीं ना कहीं है जो कि बन चुका है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। हमने अक्सर देखा है और कई स्टडीज़ में ऐसा पाया भी गया है कि लगभग एक व्यक्ति 2 से 2.5 घंटे रोज़ सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहता है। यानी कि या तो वो रील्स देख रहा होगा या किसी ना किसी से कनेक्ट कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा। वैसे एक बात तो तय है, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं दूरी जो है वो कम हो गई है। हम पल भर में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मीलों दूर ही क्यों ना हो। वैसे सोशल मीडिया के इतने सारे फ़ायदे हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी काउंट करते हैं, जिसका असर हमें कई हिस्सों पर देखने के लिए मिलता है। पर दोस्तों, क्योंकि आज है सोशल मीडिया डे, तो चलिए हम एक बार फिर क्यों ना पॉजिटिव आउटकम्स की ओर एक और बारी नज़र डालें। जी हाँ दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी आज की वार्ताकार कनक चौहान से, जिनसे हम समझेंगे सोशल मीडिया के समाज पर सकारात्मक प्रभाव।
2: साथियों, यदि हम आज के समाज का दर्पण देखना चाहें तो वह केवल अखबारों, पुस्तकों या टेलीविजन तक सीमित नहीं है, वह हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी दिखाई देता है। सुबह उठते ही किसी शुभ समाचार से लेकर रात की अंतिम शुभकामना तक, जन्मदिन की बधाइयों से लेकर आपदा के समय सहायता की पुकार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक और सामाजिक अभियानों से लेकर राष्ट्र निर्माण तक, सोशल मीडिया आज हमारे जीवन की धड़कनों में शामिल हो चुका है। एक समय था जब किसी सूचना को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, आज वही सूचना कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि 21वीं सदी को लेकर सूचना का युग माना जाता है, बल्कि सहभागिता और डिजिटल सशक्तिकरण का युग भी कहा जाता है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल समुदायों में से एक है। करोड़ों भारतीय प्रतिदिन सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सोशल मीडिया का महत्व केवल इसकी लोकप्रियता में नहीं, बल्कि समाज पर इसके प्रभाव में निहित है। यदि हम गहराई से देखें तो मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और संवाद उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता। सोशल मीडिया ने संवाद को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। आज सात समंदर पार रहने वाला परिवार भी एक क्लिक की दूरी पर है। वर्षों पुराने बिछड़े मित्र दोबारा एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, कला और परंपराओं को समझ रहे हैं। यदि कहीं महासागर और सीमाएं लोगों के बीच दूरी का प्रतीक थी, तो आज सोशल मीडिया उन दूरियों को संवाद, सहयोग और आत्मीयता में बदलने का कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, किसी भी समाज की प्रगति उसके नागरिकों की जागरूकता पर निर्भर करती है। सोशल मीडिया ने इस जागरूकता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। पर्यावरण संरक्षण, जल बचाओ अभियान

रक्तदान, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और शिक्षा जैसे विषयों पर चलाए जाने वाले अभियान कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। आज एक साधारण नागरिक भी अपनी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकता है। एक वीडियो, एक पोस्ट या एक संदेश समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। यही लोकतंत्र शक्ति सोशल मीडिया को विशेष बनाती है। इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिला। साल 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को संकट में डाल दिया था, तब सोशल मीडिया लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक नेटवर्क बन गया। अस्पतालों में बेड कम थे, ऑक्सीजन की कमी थी और लोग सहायता के लिए भटक रहे थे। ऐसे में हजारों युवाओं, डॉक्टरों, स्वयंसेवकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता समूह बनाए। #OxygenVerified, #PlasmaDaily और #COVIDSOS जैसे अभियानों ने मरीजों तक ऑक्सीजन, प्लाज्मा, दवाइयाँ और अस्पतालों की जानकारी कुछ ही मिनटों में पहुँचाई। यह केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि डिजिटल मानवता का एक जीवंत उदाहरण था जिसने हजारों परिवारों को संकट से उबरने में मदद की। साथियों, सोशल मीडिया आज केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक विकास और जन शक्तिकरण का एक प्रभावशाली उपकरण बन चुका है। यह सरकारी जागरूकता अभियान जैसे स्वच्छता भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, हर घर तिरंगा और जल संरक्षण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में यह राहत एजेंसियों, स्वयंसेवकों और नागरिकों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित कर सहायता कार्यों को गति प्रदान करता है। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में भी शामिल सोशल मीडिया का उल्लेखनीय योगदान है, जहां छोटे उद्यमी और स्थानीय व्यवसाय अपने उत्पादों को देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर यह गलत धारणाओं, अफवाहों और पूर्वग्रहों को दूर करने में सहायक है तथा तथ्य आधारित संवाद को प्रोत्साहित करता है। आज एक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षकों के व्याख्यान सुन सकता है। युवाओं के लिए यह नवाचार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता का मंच बन गया है, जहां वे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग और उद्यमिता जैसी नई क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण और सतत विकास जैसे विषयों पर जन भागीदारी बढ़ाकर यह एक जिम्मेदार समाज के निर्माण में भी योगदान दे रहा है। कला, साहित्य, संगीत, लेखन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भी सोशल मीडिया ने प्रतिभाओं को अभिव्यक्ति का वैश्विक मंच प्रदान किया है। वास्तव में जागरूकता से लेकर जनसेवा तक, कौशल विकास से लेकर नवाचार तक और स्थानीय विकास से लेकर वैश्विक सहभागिता तक सोशल मीडिया समाज में सकारात्मक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। पहले ज्ञान कुछ संस्थानों और पुस्तकालयों तक सीमित था, लेकिन आज ज्ञान की यह धारा हर हाथ में मौजूद मोबाइल तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि सोशल मीडिया को ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का माध्यम भी कहा जाता है। इसीलिए आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि अवसरों का निर्माण करने वाला युवा बन रहा है। इसमें सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। घरेलू उद्योग, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारी आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचा रहे हैं। कम लागत में अधिक लोगों तक पहुँच बनाना अब पहले से अधिक आसान हो गया है। दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति का बाबा का ढाबा इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे इस छोटे से ढाबे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देखते ही देखते हजारों लोग उनकी सहायता के लिए आगे आए और उनका व्यवसाय फिर से चल पड़ा। इस एक घटना ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि सोशल मीडिया किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। रचनात्मकता किसी विशेष मंच की मोहताज नहीं होती, उससे केवल अवसर की आवश्यकता होती है। सोशल मीडिया ने कलाकारों, लेखकों, गायकों, फोटोग्राफरों और नवाचार करने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। आज कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी कला को सीधे लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया ने अवसरों को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया है। एक NSS स्वयं सेवक होने के नाते मैंने स्वयं अनुभव किया है कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सोशल मीडिया कितना प्रभावी माध्यम बन चुका है। रक्तदान शिविरों की जानकारी हो, वृक्षारोपण अभियान हो, आपदा राहत कार्य हो या किसी जरूरतमंद की सहायता, एक छोटी सी पोस्ट हजारों लोगों को जोड़ सकती है। आज अनेक स्वयंसेवी

0: संस्थाएं और युवा संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। हर तकनीक की तरह सोशल मीडिया भी एक साधन है। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। यदि इसका उपयोग ज्ञान के लिए किया जाए तो यह एक विशाल पुस्तकालय बन जाता है। यदि इसका उपयोग सेवा के लिए किया जाए तो यह मानवता का सबसे बड़ा मंच बन जाता है। यदि इसका उपयोग जागरूकता के लिए किया जाए तो यह परिवर्तन का आंदोलन बन जाता है। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि जागरूकता से लेकर विभिन्न अभियानों तक, सेवा से लेकर जन जन के अरमानों तक, हर हाथ को अवसर, हर आवाज को पहचान मिली है। सोशल मीडिया से समाज को नई उड़ान मिली है।
1: बिल्कुल सही कहा दोस्तों कनक जी ने कि सोशल मीडिया से हम सभी को एक आवाज मिली है और एक नई पहचान मिली है। दोस्तों एक ही ऐसा जरिया बन चुका है कि जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक नए आयाम को लिख सकते हैं। वैसे ही दोस्तों एक और मंच है जहां पर हम किसी भी मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, चर्चा करते हैं और एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं, और ये मंच है युवा संसद। दोस्तों सोचिए, अगर हमें कभी एक ऐसा दिन मिले जब हम संसद में बैठ सकें, संसद की भूमिकाएँ निभते हुए हम देख सकें और अपनी बात रखें, देश के विषयों से जुड़ें, तो दोस्तों कैसा लगेगा? दोस्तों यही अनुभव हमें मिलता है युवा संसद में। ये एक ऐसा मंच है जहां छात्र और युवा संसद की कार्यप्रणाली को करीब से समझते हैं। इसमें वे सांसदों की भूमिका निभाते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं, सवाल पूछते हैं और अपने विचार भी रखते हैं, साथ के साथ तर्क के साथ समाधान भी सुझाते हैं। दोस्तों यानी कि आज का जो युवा है वो सिर्फ सोशल मीडिया के फन में ही मशगूल नहीं है दोस्तों, संसद की भूमिकाओं को भी समझता है और आगे बढ़ने का भी ब्रेव करेज जो है रखता है। दोस्तों आज के हम युवाओं को बहुत ज़रूरी है समझना, लोकतंत्र की समझ बिठाना, नेतृत्व की क्षमता रखना, आत्मविश्वास और एक जिम्मेदार नागरिक बनना। और ऐसा हो पाता है जब हम अपनी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम समझते हैं। चलिए इसी के साथ तैयार हो जाते हैं आने वाले कल के लिए और एक नवाचार को गढ़ने के लिए।

दोस्तों इन इंस्पायरिंग वर्ड्स के साथ चलिए हो जाते हैं तैयार अपनी हिम्मत के साथ कल के जिम्मेदार नागरिक और देश के भविष्य के नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे लेती हूँ विदा। हम जल्द ही मिलेंगे नई चर्चा के विषयों के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ। आप अपनी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

क्रेमलो क्राइक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को आपकी रेडियो साथी ऋतुजा का राम राम नमस्कार। साथियों, आषाढ़ का महीना लग चुका है और उमस भरी गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है और इस बार तो अभी तक पारा 40 से 45 तक पहुंच चुका है। इस बढ़ती गर्मी और उमस की मार से पेट और त्वचा संक्रमण के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी से लोगों को सांस से जुड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर जो अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी के रोगी हैं, और इसका एक बड़ा कारण प्रदूषण है। आबोहवा खराब होने का सबसे बड़ा कारण पेड़ों का कटना है। मित्रों, हम मनुष्य और सभी जीव जंतु ऑक्सीजन के लिए पेड़ों पर ही निर्भर हैं, जो हमें वृक्षों से ही मिलती है, और यही पेड़ पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखते हैं, साथ ही बारिश, धरती के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। और पेड़ों की जड़ें ही हैं जो मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। लेकिन हम इंसान ये सब समझते हुए भी अपनी ज़रूरत पूरा करने और ज़मीन के लालच में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करते चले जा रहे हैं। इसका नतीजा हम ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ और सूखे के रूप में देख ही रहे हैं।

यदि इस रफ्तार से जंगल कटते रहे तो भविष्य में जीवन के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए साथियों, समय रहते संभलिए और लोगों को भी जगाइए और साथ मिलकर सबकी सहभागिता से पेड़ लगाइए। इससे जो लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को फलते फूलते देखकर देखेंगे, उनका जुड़ाव उनसे बना रहेगा और लोग पेड़ काटने से बचेंगे, साथ ही उनकी सुरक्षा भी होगी। एक छोटा सा जंगल आप भी अपने आसपास खाली पड़ी जमीन पर लगा सकते हैं, मियावाकी जंगल के रूप में। अब आप सोचेंगे कि ये मियावाकी जंगल क्या है, तो साथियों, मियावाकी जंगल कम जगह पर तेजी से तैयार किए जाने वाले घने जंगल होते हैं, जिनकी शुरुआत जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी ने की थी। इस पद्धति में एक छोटे क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के कई प्रकार के पेड़ पौधे पास पास लगाए जाते हैं, जिससे जंगल जल्दी विकसित होता है। इसमें अलग अलग ऊंचाई वाले पौधे लगाए जाते हैं, जैसे झाड़ियाँ, छोटे पेड़ और बड़े पेड़, और कुछ ही सालों में एक हरा भरा जंगल तैयार हो जाता है। ये जंगल आसपास के तापमान को नियंत्रित तो रखता ही है, साथ ही ये कई तरह के पशु पक्षियों, छोटे जीवों की पनाहगाह बन जाते हैं और इससे जल संचयन के साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही वायु प्रदूषण भी कम होता है। तो भैया, हम तो यही कहेंगे कि बचाइए जंगल, लगाइए पेड़, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार। इनके बिना सूना है संसार, और फिर मिलकर गाएंगे हमारे साथ मिलकर मीठा सा मल्हार।

0: साथियों, किसी देश की खुशहाली का आधार जल, जंगल, जमीन के साथ होता है वहाँ की ज्ञान संपदा। वह ज्ञान संपदा जो बसने वाले लोगों ने अपने शोध अनुभव से अर्जित की हो, और यही ज्ञान संपदा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली और दूरदर्शी हमारे पूर्वज थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म 7 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। वह एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट से शिक्षा पाई और उसी संस्थान में अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ कर गणित के प्रोफेसर बने। दादाभाई नौरोजी की दो सबसे प्रमुख पुस्तकें रहीं पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और पावर्टी ऑफ इंडिया इन। इन पुस्तकों में उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत विषय पर विस्तार से वर्णन किया और बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, और दूसरी किताब में उन्होंने भारत में व्याप्त गरीबी और उसके आर्थिक कारणों को समझाया। दादाभाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों की भयानक दरिद्रता के उन्मूलन के लिए आंदोलन भी चलाया। साथियों, आज ऐसे महान विचारक, समाज सेवी दादाभाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: मित्रों, अब बात रोजी रोटी से जुड़ी। रोजी रोटी यानी हमारे दुधारू पशु जिनकी

0: अच्छी नस्ल और सेहत से जुड़ी होती है हमारे घर परिवार की खुशहाली, और ये खुशहाली बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि उनके चारे पानी की व्यवस्था अच्छी हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो सके। अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी विषय पर सुनते हैं ये वार्ता। आज हमारे वार्ताकार हैं डॉक्टर रेवतीलाल राजपूत। तो चलिए सुनते हैं, विषय है आज की वार्ता का, पशुओं से अधिकतम दुग्ध उत्पादन कैसे लें।
1: प्रिय पशुपालक भाइयों, दूध प्राप्त करने के लिए आप अधिकतर गाय भैंस पालते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि कुछ ही पशुपालक अपने पशुओं से भरपूर दूध ले पाते हैं, जिससे अधिकांश पशुपालकों के लिए दूध घाटे का सौदा रहता है। यदि पशुपालक अपनी सोच को वैज्ञानिक तरीके से ढाल लें तो वे अपने पशुओं से भरपूर दूध लेकर दूध के व्यवसाय को घाटे के सौदा से उबार सकते हैं, अर्थात लाभदायक बना सकते हैं। गाय भैंस के रोजगार को लाभदायक बनाने के लिए प्रमुख आवश्यक पहलू हैं पशु की अच्छी नस्ल का चुनाव, पशु की उचित खिलाई पिलाई का प्रबंध, पशु के उचित रखरखाव का प्रबंध, पशु का रोग बीमारी से बचाव एवं समुचित इलाज। दुधारू पशुओं में अच्छी नस्ल की बात करें तो गाय के लिए देसी गाय में साहीवाल तथा विदेशी नस्लों में संकर जर्सी तथा संकर होलिस्टीन फ्रीजियन दूध के लिए सबसे उत्तम हैं। हमारे प्रदेश में गाय के नस्ल सुधार हेतु इन्हीं नस्लों का हिमीकृत वीर्य फ्रोजन सीमन प्रयोग किया जा रहा है, अतः पशुपालक भाई इन्हीं नस्लों को पालें तथा अपने पशुओं को इन्हीं नस्लों के फ्रोजन सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराएं, ताकि आने वाले समय में हमें अधिकतम दूध उत्पादन मिल सके। भैंस से अधिकतम दूध प्राप्त करने हेतु मुर्रा नस्ल सबसे अच्छी है, अतः किसान भाई मुर्रा नस्ल की ही भैंस रखें तथा उसे मुर्रा नस्ल के फ्रोजन सीमन से गाभिन कराएं, ताकि भविष्य में भी अच्छे पशु मिल सकें। पशु की उचित खिलाई पिलाई से मतलब है कि पशु को संतुलित आहार दिया जाए। संतुलित आहार का आशय है कि पशु को 24 घंटे में दिए जाने वाले चारे दाने में पशु की आवश्यकता के सभी भोजन तत्व उचित मात्रा तथा उचित अनुपात में हों। पशु के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं प्रोटीन, वसा, शर्करा, खनिज लवण, विटामिन और पानी। इनमें से प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन एवं पानी प्रमुख हैं, जिनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वसा एवं शर्करा की पूर्ति सामान्य रूप से दिए जाने वाले चारे दाने से हो जाती है। प्रोटीन की पूर्ति हेतु हरा चारा देना अति आवश्यक है। हरे चारों में से विटामिन ए तथा विटामिन सी की पूर्ति भी हो जाती है। विटामिन डी की पूर्ति सूर्य की रोशनी से हो जाती है। विटामिन बी पशु अपने शरीर में चारों से बना लेते हैं। प्रोटीन की पूर्ति हेतु दाल वाली हरे चारे की फसलें बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे जाड़े के मौसम में बरसीम तथा बरसात एवं गर्मी के मौसम में लोबिया रमाश का चारा खिलाना। ये दाल वाले हरे चारे भरपेट मात्रा में खिलाने पर दुधारू पशु से 6 लीटर दूध बिना रातव दाने के प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से दाल वाले हरे चारे खिलाने से रातव दाने के खर्च में बचत हो जाती है, जिससे दूध उत्पादन पर खर्च कम आता है। यदि पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो गाय को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम तथा भैंस को 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम के हिसाब से रातव दाना मिश्रण देना चाहिए। इसके अलावा जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलोग्राम तथा भैंस को 2 किलोग्राम रातव दाना मिश्रण प्रतिदिन देना चाहिए। गाभिन पशु को 6 माह तक के गर्भ पर 1 किलोग्राम और 6 माह से अधिक के गर्भ पर 1.5 से 2 किलोग्राम रातव देना चाहिए। रातव दाना मिश्रण बनाने में 1 किलोग्राम मिश्रण हेतु अनाज यानी गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा में से कोई भी एक या दो या सभी मिलाकर के।

0: 300 ग्राम, खल जैसे सरसों, मूंगफली, बिनौला, कोई सी खल या सभी मिलाकर के 400 ग्राम, गेहूं का चोकर या चावल का टूटन, इनमें से कोई भी एक या दोनों मिलाकर के 270 ग्राम। इसके अलावा खई लवण मिश्रण 20 ग्राम तथा साधारण नमक 10 ग्राम मिलाना चाहिए। ये 1 किलो रातव के लिए है। दुधारू पशुओं को दूध उत्पादन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पशु सूखे चारे की मात्रा का 3 से 4 गुना अधिक पानी पीते हैं। इसके अलावा प्रति लीटर दूध के लिए 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अतः पशुओं को जाड़े के दिनों में 2 बार तथा गर्मी के मौसम में कम से कम 3 बार पानी पिलाना चाहिए। अच्छा रहे कि पशु के पास पीने के लिए पानी हर वक्त उपलब्ध रहे। रोग बीमारी से बचाव हेतु पशुओं को बरसात से पूर्व गलाघोंटू खुरपका का टीकाकरण कराना चाहिए। खुरपका मुंहपका का टीकाकरण वर्ष में 2 बार अवश्य कराएं। दोनों टीके सरकारी पशु अस्पताल पर निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं। दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर से बचाव एवं अधिक दूध प्राप्त करने हेतु पशु को ब्याने से 2 माह पहले तथा 2 माह बाद तक खई लवण मिश्रण ऑस्टोवेट फोर्ट यानी कैल्शियम 100 मिलीलीटर प्रतिदिन पिलाएं। थनेला रोग के बचाव हेतु ब्याने से पूर्व विटामिन ई का इंजेक्शन लगवाएं। ब्याने के बाद दूध दुहने के बाद पशु के थनों को पोटेशियम परमैंगनेट के 0.1% घोल से धोएं। इस प्रकार से हम पशु की देखभाल और खिलाई पिलाई करके अधिकतम दूध ले सकते हैं।
1: अभी आपने सुनी वार्ता, पशुओं से अधिकतम दुग्ध उत्पादन कैसे लें। और आज हमारे वार्ताकार थे डॉक्टर रेवतीलाल राजपूत। और साथियों, इसी वार्ता के साथ ही आप आगरा और उसके आसपास के इलाकों का आज और कल के तापमान भी जान लीजिए। आज आगरा और उसके आसपास के इलाके में दिन का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहा, साथ ही हल्के बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। कल यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। साथ ही कल भी बादल छाए रह सकते हैं। और इसके साथ ही एक विशेष सूचना, अब उत्तर प्रदेश में धारा 24 के अंतर्गत रोवर द्वारा पैमाइश का अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसकी विशेषता ये है कि इसे सीमा विवाद का त्वरित समाधान हो सकेगा और सही पैमाइश से अनावश्यक विवादों एवं मुकदमों में कमी आएगी। यह पैमाइश राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कराई जा रही है। तो भैया, अब इसी के साथ अब हम एक और सूचना आपको दे दें जो है जुड़ी हुई हमारे खेत और तालाबों से। खेत और तालाब बनवाने पर अब सरकार दे रही है 50% तक सब्सिडी। जल संरक्षण, मछली पालन और सिंचाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए खेत तालाब योजना लेकर आई है। किसान अपने खेत में तालाब की खुदाई कराता है तो उसे 50% या फिर अधिकतम 52,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। किसान को कृषि विभाग की वेबसाइट पर arg.darshan.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। और साथियों, इतनी सारी बातों के बाद अब हम फिर एक बार फिर रुक करते हैं मीठे से लोकगीत की ओर।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीलोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनिंगटन ओवल लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। इस मैच का प्रसारण आप मीडियम वेव पर सुन सकेंगे। बाकी आज के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर जारी रहेगा। तो आइए अब चलते हैं अपने दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल की ओर।

श्रमिक दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम मजदूर मंडल में आपके साथ मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि गर्मी और उमस वाले इन दिनों में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देश और समाज के विकास में अपनी श्रम शक्ति से योगदान दे रहे होंगे। हम सब अपने घर परिवार के प्रति तो जिम्मेदार हैं ही दोस्तों, साथ ही अपने देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे मिलजुल कर रहना, राष्ट्रीय संपदा को नुकसान न पहुंचाना, प्रदूषण न फैलाना और देश, राज्य और स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना यानी मतदान करना। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव हो अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि अपने वोट से ही हम अपने लिए शासन व्यवस्था का चुनाव करते हैं, देश की संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की शासन व्यवस्था का आधार ही संसदीय प्रणाली है। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां जनता की आवाज़ को प्रतिनिधियों के माध्यम से सुना जाता है और देश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के आधे से भी ज़्यादा देशों में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था यानी लोकतंत्र, इसी लोकतंत्र की भावना को बढ़ाने और संसदीय प्रणाली का प्रचार करने, इस प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया 30 जून को विश्व संसदीय दिवस

मनाती है। इस मौके पर दोस्तों हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने देश की लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था को अपनी जागरूकता और कार्य व्यवहार से और भी उन्नत बनाएं, सोच समझकर संसद में ऐसे प्रतिनिधि चुनकर भेजें जो संसदीय प्रणाली का और संसद का सम्मान करें, देश हित के जनहित के कार्य करें। हमें खुद भी अपनी संसद का सम्मान करना चाहिए क्योंकि देश की यही संसद देश की व्यवस्थाएं चलाती है। दिल्ली में मौजूद हमारा संसद भवन सिर्फ एक इमारत नहीं है, देश में जितने भी कानून बनते हैं सब संसद तय करती है। यह विचार विमर्श, संवाद और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार और श्रमिक कल्याण पर विस्तार से विचार कर ठोस कदम उठाए जाते हैं। हमारे श्रमिक भाई अपने श्रम, समर्पण और कौशल से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके हितों की रक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन से जुड़े अनेक प्रावधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। इसीलिए संसद और आम नागरिक के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विश्व संसदीय दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और देश के विकास में अपनी सकारात्मक भागीदारी निभाएं। साथ ही अपने अधिकारों को भी समझें। देश की संसद ने हमारे लिए जो योजनाएं और कार्यक्रम चला रखे हैं उनकी जानकारी करें, उनका लाभ उठाएं और अगर कोई संसदीय व्यवस्था की अवहेलना कर हमारे अधिकारों का हनन करे तो उसके विरोध में आवाज़ उठाएं। आज के विश्व संसदीय दिवस के आयोजन का उद्देश्य भी यही है दोस्तों कि दुनिया में सभी को समान अधिकार मिलें। सबको आज़ादी से अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, लेकिन भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखेबाजी से या कमजोरी का फायदा उठाकर अधिकार छीने जाएं या परेशान किया जाए तो कभी भी मजबूर होकर शोषण नहीं सहना चाहिए, बल्कि शोषण के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए। देश की संसदीय प्रणाली हमें ये अधिकार देती है कि हर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इसीलिए हमें इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं जहां हम सभी अपनी सरकार बनाते हैं, शासन व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, तो किसी के दबाव या उत्पीड़न में क्यों रहें। संसदीय प्रणाली हमेशा लोगों के हित की बात करती है और जब हम इस बारे में जागरूक होते हैं तो सही का साथ और गलत का विरोध करने में कभी पीछे नहीं हटते।

श्रमिक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आइए कार्यक्रम में अब बात करते हैं कुछ सेहत टिप्स की। अक्सर हमारे भाई बहन जो फैक्ट्रियों में कई घंटों तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, खेतों में लगातार झुककर बुवाई करते हैं या निर्माण स्थलों पर भारी बोरे और ईंटें उठाते हैं, वे शाम होते होते कमर और घुटनों में दर्द महसूस करते हैं। कुछ तो बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन दोस्तों, दवाइयां खाने से अच्छा है कि सही तरह से काम किया जाए, सावधान रहा जाए, तो इस दर्द से बचाव भी होता है और राहत भी मिलती है। तो जब भी ज़मीन से कोई भारी चीज़ या बोरा उठाना हो तो सीधे कमर से नीचे मत झुकिए, इससे रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है। पहले घुटनों के बल थोड़ा नीचे बैठें, फिर वजन को शरीर के करीब लाते हुए पैरों के दम पर खड़े हों, इससे कमर सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा झुककर काम करने वाले हमारे भाई बहन हर एक दो घंटे में खड़े हो जाएं, कमर पर हाथ रखकर थोड़ा पीछे की ओर झुकें, फिर बाजुओं को ऊपर खींचें, इससे मांसपेशियों का तनाव खत्म होगा। अगर काम के बाद घर लौटने पर ज़्यादा थकान और दर्द हो तो 4-5 लहसुन की कली सरसों के तेल में पकाकर इस गुनगुने तेल से पैर और कमर की मालिश करें। दोस्तों, अगर हम अपनी हड्डियों की मजबूती पर ध्यान दें तो भी दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन ज़रूर करें।

0: दोपहर के खाने में दही या मठा लेना शरीर में कैल्शियम बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौसम के अनुरूप अपनी जीवन शैली बनाएं, ताज़ा पौष्टिक भोजन करें, साफ सफाई से रहें और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो देर ना करें, इलाज कराएं। हर तरह से कोशिश करें कि अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही हम अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। और दोस्तों, ये तो हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे, लेकिन इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों को जानने के लिए आइए सुनते हैं रवि जायसवाल की वार्ता, हमारा घर और खुशहाली।
1: हमारा संसार हमारा घर होता है। हमारा घर

संसार हमारा घर होता है। हमारा घर कैसा भी हो, हमारी खुशियाँ हमारे घर में ही होती हैं। हम सब ने अक्सर ये सुना होगा और खुद ये महसूस भी किया होगा कि हम चाहे कितनी भी सुंदर जगह पर घूम कर आएँ और कितने भी अच्छे फंक्शन में क्यों ना हों, मगर अपने घर के सुकून की बात ही कुछ और है। अब सवाल ये है कि हमारे घर में खुशहाली आर्थिक रूप से भी हो, सामाजिक रूप से भी हो, और संस्कारों में हम इतने संपन्न हों कि जिंदगी की हर मुश्किल को झेलकर उसी मुश्किल को खुशियों में अगर हम बदल सकें तो यही हमारी काबिलियत है। और संस्कार भी, अपने घर की खुशहाली के लिए एक इंसान को बहुत कुछ करना होता है। अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर इतिहास और लोगों के अनुभव बताते हैं इन सब का फल मिलता जरूर है। हमारे घर की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए हम सभी जी तोड़ मेहनत करते हैं, मगर इन सबसे अलग भी कुछ है जो हमें औरों से ऊपर उठाता है। वो है कि हमें अपना व्यवहार सद्भावपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत की कई टन बातों से अच्छे व्यवहार का छोटा सा अंश कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ तालमेल, सादगी, एक दूसरे की पीड़ा समझने का अनुभव, ऐसे मानवीय गुण हैं जो परिवार में खुशहाली को बढ़ाते हैं। ऐसे संस्कार हमें तभी हासिल होते हैं जब हम इन्हें ग्रहण करने का प्रयास करें। ये तभी होगा जब हम निजी दंभ को अपने व्यक्तित्व में कोई स्थान ना दें। इसके साथ ही हमें अपने परिवार में उस विचारधारा को लाना चाहिए जो खुद के परिवार, पड़ोस और पूरे समाज के नैतिक व्यवहार, सांस्कृतिक उत्थान और आपसी सद्भाव के निर्माण के लिए आवश्यक हो। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि हम परिवार में खुद को छोड़कर बाकी सदस्यों से नैतिक कर्तव्य निभाने की अपेक्षा ना करें। जिम्मेदारियों के सभी मामलों में हमें सबसे पहले आगे आना होगा, और जब हम इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होता कि परिवार के बाकी सदस्यों पर हमारी बात का प्रभाव ना पड़े। और इस तरह जब सारे सदस्य खुशहाली के लिए काम करेंगे और अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो हमारे घर में खुशहाली की नींव उतनी ही गहरी होगी। हमारी प्रसन्नता और संतुष्टि सिर्फ जीवन के लिए ही ना हो, बल्कि इसलिए भी हो कि हम मेहनत करके, पढ़ लिख कर, कोई अच्छा काम सीखकर या कोई अच्छा रोजगार करने के बारे में सोचें और करें भी। इससे एक तरफ हमारे परिवार में आर्थिक खुशहाली तो आएगी ही, तो दूसरी तरफ हम राष्ट्र की समृद्धि में योगदान भी देते हैं और समाज के जरूरतमंद लोगों का काम भी। हमारे हर काम बड़े पुनीत होते हैं अगर हम सद्मार्ग के रास्ते पर चलें तो। ऐसा करके हम परिवार के अलावा समाज में भी खुशहाली का संचार करते हैं। किसी भले को रास्ता दिखाना, उसको जिंदगी का वास्तविक मर्म समझाना और कर्तव्यों का बोध कराकर उसको काम दिलाने की कोशिश करना, ये एक बड़ी पूजा के समान है और सबको ऐसा करना चाहिए। खुशहाल जीवन कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल ना किया जा सके। हम आगे बढ़ने की प्रतियोगिता में तो हों, मगर किसी धनवान या अच्छे बिजनेसमैन से ईर्ष्या करें तो हम खुशहाल नहीं रह सकते। हमें तो अपने कर्तव्यों में रत रहना है, फिजूल के शौक नहीं करने हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब के अलावा हर व्यसन से दूर रहकर अगर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और परिवार में ये रास्ते चिरस्थायी खुशहाली के माध्यम हैं। कभी कभी हम देखते हैं अगर हमारा परिवार संयुक्त है तो ऐसे परिवार में छोटी छोटी बातों को किनारे करना जानते हैं, फिर भी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मामला जो परिवार के हरेक सदस्य को प्रभावित करता हो, ऐसे मामलों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि परिवार के अंदर बैठक करके सबको बता देना चाहिए और सलाह भी मांग लेनी चाहिए। ऐसा करके हम परिवार की एकता को तो मजबूत करते ही हैं, साथ ही एक दूसरे पर
विश्वास

0: भी मजबूत होता है। हमें देखना होगा कि परिवार का हर सदस्य खुश रहे। आजकल देखा जा रहा है कि हम अपने बुजुर्गों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि हर परिवार में ऐसी बात नहीं है, मगर ऐसे भी काफ़ी संख्या में लोग हैं जो अपने माता पिता की ठीक से देखभाल तो करते ही हैं, कभी कभी जटिल मामलों में उनकी सलाह भी लेते हैं। ऐसा करके हम ये संदेश भी देते हैं कि हमारे बुजुर्गों की वैल्यू हमारे परिवार में सम्मानजनक है। परिवार के हर सदस्य का मन खुश हो तो वही है वास्तविक खुशी, और ऐसे परिवार को ही संपन्न और सांस्कृतिक माना जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीयता भी हमें यही सिखाती है। और परिवार में सास बहू के संबंध की बात है तो यहाँ हमें आधुनिक रूप को सहज रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। आज की कोई भी लड़की ऐसी भी बंदिश को स्वीकार नहीं करती और नहीं वो इस बात को स्वीकार करती है कि वह ननद, देवर, जेठ और सास ससुर के अलावा अपने बच्चों के कपड़े धुले और शाम को खाना बनाकर झाड़ू पोछा करके अपनी सास के पैर भी दबाए। ये सब सोच अब पुरानी हो चुकी है। अब तो हर बहू खुलकर सांस ले रही है, स्वच्छंद संस्कारों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, और जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ हर परिवार में खुशहाली का प्रतिशत अधिक है। अब जरूरत है कि ऐसे माहौल हर परिवार में हो, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे घर में पूर्ण खुशहाली है।
1: हमारा घर और खुशहाली। श्रमिक दोस्तों, अभी हम रवि जायसवाल से ये वार्ता सुन रहे थे। और अब दोस्तों, कार्यक्रम में आपके लिए आज का प्रश्न, आपको बताना है कि संसदीय दिवस के अलावा आज और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जवाब आपको थोड़ी देर बाद देंगे, तब तक आप सोचिए। मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रमिक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। अब नमन करते हैं दादा भाई नौरोजी को उनकी पुण्यतिथि पर, और बात करते हैं ज्ञान सागर में देश के महान राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे और 3 बार इसके अध्यक्ष भी रहे। वे ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। वहाँ उन्होंने भारत के लोगों की समस्याओं और अधिकारों की आवाज़ उठाई। दादा भाई अपनी प्रतिभा, दूरदर्शिता और राष्ट्रभक्ति से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने देश के धन को अंग्रेजों द्वारा अपने देश में ले जाने का विरोध करते हुए धन की निकासी का सिद्धांत दिया। धन की निकासी के इस बड़े सच को दुनिया के सामने लाने वाले दादा भाई नौरोजी का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। हमारे कई श्रमिक भाई बहन अभावों में जीते हैं और सोचते हैं कि गरीबी में पैदा हुए हैं, इसीलिए हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन दादा भाई के जीवन को देखिए। उनका जन्म 1825 में एक साधारण परिवार में हुआ था। जब सिर्फ 4 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां ने बहुत ही तंगी और गरीबी में अकेले ही मजदूरी और सिलाई कढ़ाई करके उनका पालन पोषण किया। उन्होंने एक बात ठान ली थी कि चाहे कितनी भी तकलीफ आए, बेटे को पढ़ाएंगी ज़रूर। दादा भाई ने भी अपनी मां की मेहनत को समझा और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगे। हालांकि लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई में अव्वल निकलते हुए उन्होंने बहुत ही जल्द गणित के प्रोफेसर पद पर कार्य करना शुरू कर दिया। साल 1892 में वे ब्रिटेन की संसद के चुनाव में खड़े हुए और जीते भी। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों के घर में बैठकर उन्हीं की भाषा में सीना तान कर कहा कि तुम हमारे देश को लूट रहे हो और हमारे मजदूरों को भूखा मार रहे हो। उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने पहली बार हिसाब लगा

कर बताया कि एक आम हिंदुस्तानी मात्र 20 रुपए रोज कमाता है, जबकि अंग्रेज यहां से करोड़ों रुपए लूटकर ले जा रहे हैं। वे खुले मंच से कहते थे कि भारत के लोगों का ही देश पर राज होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा अपना शासन नहीं होगा तब तक गरीबी और मजदूरों का भला नहीं हो सकता। अंग्रेजों को उनकी गलत नीतियों पर ललकारते हुए दादा भाई ने देशवासियों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने को प्रेरित किया और खुद भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे। देश के इस वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से हम सबको भी यही सीखना है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर इरादे पक्के हों और शिक्षा की शक्ति हाथ में हो तो दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी सिर उठाकर जिया जा सकता है। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन से हम सबको यह संदेश दिया है कि ज्ञान, तर्क, ईमानदारी और धैर्य के बल पर अच्छे बदलाव लाए जा सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दिया जा सकता है। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम भी अपने कार्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें तथा देश के विकास में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, ये तो थी बात ज्ञान सागर की, और अब आज के प्रश्न का जवाब। आज विश्व संसदीय दिवस तो है ही, साथ ही आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह यानी अंतरिक्ष में घूमते बड़े बड़े पत्थर जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब धरती पर कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि ये अंतरिक्षीय पत्थर आपस में टकराते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी मिट्टी, अपने पर्यावरण और अपनी धरती का महत्व समझिए, इनके संरक्षण में अपना योगदान दीजिए और अब कार्यक्रम मजदूर मंडल में आनंद लीजिए इस गीत का।

इस गीत के साथी श्रमिक दोस्तों, मुझे यानी संतोष वर्मा को आज का मजदूर मंडल कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: अभी ही हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्य

0: कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे, ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said, "The collective responsibility of nations is to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking." He said India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform.
2: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform. And since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
1: President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute in nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president said that every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047. Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged students to become job creators rather than job seekers. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rules has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi over 13,000 booth level officers or BLOs will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of electoral rolls. Addressing the media, Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, said that claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on 7th of October. Union Home Minister Amit Shah today launched the Foreign Contribution Regulation Act, FCRA 2.0, portal and the Electronic Overseas Citizen of India or EOCI card in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that both initiatives will improve citizen services and address the difficulties faced by those receiving donations through the FCRA portal. He said when the intention is clear, the policy is transparent, and there is a mindset to embrace technology, then all forms of governance becomes easier for honest people. Indian Railways has

0: sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 stations or cabins on the high-density network HDN and highly utilized network HUN routes of Asansol Division of Eastern Railways. The cost of the project is over 400 crore rupees. Elaborate arrangements for accommodation of 55,000 pilgrims have been put in place for the annual Amarnath Yatra with focus on enhanced security. Lieutenant Governor Manoj Sinha, who is also the chairman of the Sri Amarnath Shrine Board, will flag off the first convoy. The 57-day pilgrimage to the 3,880-meter-high Amarnath Cave Shrine will commence on 3rd of July. The Yatra will commence from the traditional 48 kilometers Noonwan Pehelgam route in Anantnag district and the shorter but steeper 14-kilometer Baltal route in Gandharbal district. Special programs were organized today on the occasion of Hool Divas across Jharkhand, including state capital Ranchi, to pay tribute to the heroes of the Hool Rebellion, Sidho Kanho, Chand Bhairav and Phulo Jano. In a social media post, Prime Minister Modi also paid tributes to Sidho Kanho, Chand Bhairav, Phulo Jano and all the brave tribal warriors who stood firm against the injustice of foreign rule. And Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, will arrive in New Delhi tomorrow evening on a three-day visit for the 16th India-Japan Annual Summit. The External Affairs Ministry said the summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views. And in FIFA World Cup, Ivory Coast will take on Norway in round of 32 clash in Texas, US tonight at 10:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 7:10। अब समय है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के अवसर पर राजीव शर्मा से वार्ता। विषय है उल्कापिंडों की रोचक दुनिया।
2: प्रतिवर्ष 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें ब्रह्मांड में मौजूद एस्ट्रॉइड, उनके खतरों और उनसे जुड़े वैज्ञानिक अवसरों के प्रति जागरूक करता है। यह सिर्फ खगोल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सुरक्षा और भविष्य जुड़ा सवाल है। 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुस्ता क्षेत्र में एक विशाल एस्ट्रॉइड वायुमंडल में फट गया था। इस घटना को तुंगुस्ता विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 2150 वर्ग किलोमीटर का जंगल पल भर में साफ हो गया। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 1000 गुना शक्तिशाली था। शुक्र था कि वह क्षेत्र आबादी वाला नहीं था। इसी घटना की याद में 30 जून को यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस मनाने के प्रमुख उद्देश्य हैं लोगों को एस्ट्रॉइड और उनसे जुड़े संभावित खतरों के बारे में जानकारी देना, एस्ट्रॉइड के अध्ययन और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करना, ऐसी तकनीक के विकास को बढ़ावा देना जिससे भविष्य में किसी बड़े एस्ट्रॉइड के खतरे को कम किया जा सके, छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करना। इस दिवस की नींव 2014 में रखी गई थी। इसे क्वीन बैंड के गिटारिस्ट और खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रायन ने, अपोलो 9 के अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वेकार्ट, फिल्म निर्माता ग्रेग डिक्टर्स और B612 फाउंडेशन के अध्यक्ष डेनिका रैमी ने मिलकर शुरू किया था। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष में पाए जाने वाले चट्टानी या धात्विक छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। ये मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड आकार में बहुत छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड इतने बड़े होते हैं कि यदि वे पृथ्वी से टकराएं तो व्यापक विनाश हो सकता है। एस्ट्रॉइड केवल खतरे का स्रोत नहीं, बल्कि वे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एस्ट्रॉइड में सौर मंडल के निर्माण के समय की सामग्री सुरक्षित रहती है। इनका अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी और ग्रहों के निर्माण को बेहतर समझ सकते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड में लोहे, निकेल, प्लेटिनियम और अन्य मूल्यवान धातुओं की उपस्थिति पाई गई है। भविष्य में अंतरिक्ष खनन की संभावना पर शोध किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कुछ एस्ट्रॉइड द्वारा पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक पदार्थ

अर्थ पहुंचने की संभावना रही होगी जिसने जीवन के विकास में भूमिका निभाई हो सकती है। इतिहास में कई बार बड़े खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकरा चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड के टकराने से डायनासोरों के विलुप्त होने की घटना हुई थी। आज वैज्ञानिक पृथ्वी के निकट आने वाले एस्ट्रॉइड की लगातार निगरानी करते हैं। इसके लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का उपयोग किया जाता है। एस्ट्रॉइड की गति और दिशा का अध्ययन किया जाता है। संभावित टकराव की स्थिति में बचाव योजनाएं बनाई जाती हैं। विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष संस्थाएं एस्ट्रॉइड के अध्ययन व उससे बचाव के लिए कई कदम उठा रही हैं, जैसे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क विश्व स्तर पर स्थापित एक सहयोगी नेटवर्क है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट आने वाले एस्ट्रॉइड की खोज, निगरानी, जोखिम मूल्यांकन तथा संभावित टक्कर की स्थिति में समय पर चेतावनी प्रदान करना है। इसकी स्थापना सन 2014 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय के सहयोग से की गई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क पृथ्वी को संभावित एस्ट्रॉइड टक्करों से सुरक्षित रखने के लिए स्थापित एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। यह वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष एजेंसियों और सरकारों को एक साझा मंच प्रदान करता है जिससे संभावित खतरों की समय रहते पहचान और उचित तैयारी संभव हो सके। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क में 28 से अधिक देशों के लगभग 60 सदस्य शामिल हैं। इनमें प्रमुख संगठन हैं नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान, जर्मन एरोस्पेस सेंटर जर्मनी, सेंटर नेशनल डीला रिसर्च साइंटिफिक फ्रांस। इसी प्रकार एक अन्य संस्था स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप अंतरिक्ष एजेंसियों और वैज्ञानिक संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर की गई थी। इसका उद्देश्य पृथ्वी के लिए खतरा बनने वाले एस्ट्रॉइड और धूमकेतुओं के विरुद्ध संभावित अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाना तथा विभिन्न देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसरो ने पृथ्वी के पास आने वाली वस्तुओं यानी एनईओ पर नजर रखने के लिए एक नेटवर्क बनाया है। बेंगलुरु में स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर लगातार आकाश पर नजर रखते हैं। ये केंद्र दुनिया भर की एजेंसियों के साथ डाटा साझा करते हैं ताकि किसी भी खतरे का पहले पता चल सके। इसरो भविष्य में एस्ट्रॉइड पर जाने के लिए मिशन की योजना बना रहा है। वैज्ञानिक ऐसे यान बनाने पर काम कर रहे हैं जो एस्ट्रॉइड के पास जाकर उसका अध्ययन कर सके। 2022 में नासा के डार्ट मिशन ने एक एस्ट्रॉइड से टकराकर उसकी दिशा बदली थी। इसरो भी इसी तरह की तकनीकी विकसित कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर हम भी किसी एस्ट्रॉइड को रास्ते से हटा सकें। इसरो भारतीय तारामंडलों और वेधशालाओं के साथ मिलकर काम करता है। माउंट आबू, हनले और नैनीताल की वेधशालाएं इसरो को नए एस्ट्रॉइड खोजने में मदद करती हैं। इससे खतरे की समय से पहले पहचान हो जाती है। एस्ट्रॉइड का खतरा किसी एक देश पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर है, इसलिए बचाव का काम भी सभी देशों को मिलकर करना है। इसरो अपने संसाधनों और तकनीक से इस वैश्विक प्रयास में भारत का योगदान दे रहा है। आने वाले समय में भारत ग्रह रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस मनाने का दिन नहीं है, यह जागरूकता, विज्ञान और वैश्विक सहयोग का दिन है। एस्ट्रॉइड का खतरा देशों की सीमाएं नहीं देखता, यह पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। इसलिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी साझा है। जैसा कार्ल सेगन ने कहा था, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉइड दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है और इसकी सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तथा तकनीकी विकास आवश्यक है। एस्ट्रॉइड हमारे लिए केवल खतरा नहीं बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस दिवस के माध्यम से मानवता अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने, संभावित खतरों से बचने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पृथ्वी बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाती है। अंतरिक्ष को समझना पृथ्वी की सुरक्षा की दिशा में

0: पहला कदम है।
1: अभी आपने सुनी कार्यक्रम विविधा में राजीव शर्मा से वार्ता, विषय था उल्कापिंडों की रोचक दुनिया। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाश
2: है। दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य, केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना, तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है, जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
4: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
3: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्पकला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
1: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी। लोगों के दुख पीड़ा को एहसास करकर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उत्तर प्रदेश

0: परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक शत प्रतिशत स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित दिखने वाले स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कानपुर उन्नाव पीलीभीत हमीरपुर अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी दो दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है।
1: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले तीन दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। अगले दो दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
3: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:32 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

स्वागत है आपका कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में। मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेजबान अली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जो केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि धरती को बचाने का भी संकल्प है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह की, जो हर वर्ष 1 जुलाई यानी कल से 7 जुलाई तक पूरे देश में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि धरती पर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? ना शुद्ध हवा मिलेगी, ना वर्षा होगी, ना पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देगा और ना ही जीवन की हरियाली दिखाई देगी। इसलिए कहा गया है, पेड़ है तो कल है, पेड़ है तो जीवन है। दोस्तों, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य था लोगों में वनों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा

करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। तभी से हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व अत्यंत बड़ा है। पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में पेड़ कम होते जा रहे हैं वहां गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है और जल संकट भी गहराता जा रहा है।

दोस्तों, आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वो लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों और कीट पतंगों का घर है। हमारे देश के अनेक आदिवासी समुदायों की आजीविका भी वनों पर निर्भर करती है। लकड़ी, औषधियां, फल, गोंद, शहद और अनेक वन उत्पाद हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, एक विकसित समाज के लिए केवल सड़कें और इमारतें ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण भी उतना ही आवश्यक है। आज कई शहरों में तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे प्रदूषण और गर्मी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वन महोत्सव हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।

दोस्तों, वैसे अब प्रश्न उठता है कि हम वन महोत्सव कैसे मना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने घर, विद्यालय, कार्यालय या खेत के आसपास कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी नियमित देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। हमें पौधों को पानी देना चाहिए, उन्हें पशुओं से बचाना चाहिए और उनके बड़े होने तक उनकी देखरेख भी करनी चाहिए। विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध लेखन और पर्यावरण जागरूकता रैली आयोजित भी की जा सकती है। गांव में पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एक बड़ा पेड़ बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। इसलिए हमें केवल नए पौधे लगाने पर ही नहीं, बल्कि पुराने पौधों और पुराने वृक्षों को बचाने पर भी ध्यान देना होगा।

0: दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में भी पेड़ों को विशेष महत्व दिया गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी और आंवला जैसे पौधों को पूजनीय माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश सदियों पहले ही दे दिया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वन महोत्सव को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न समझें, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाएं। यदि देश का प्रत्येक नागरिक हर वर्ष एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ पर्यावरण मिल सकता है। आइए इस वन महोत्सव सप्ताह पर हम सभी एक संकल्प लें, मैं एक पौधा अवश्य लगाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि एक पेड़ सौ उपकार देता, छाया फल अपार, धरती का ये सच्चा गहना, पेड़ों से ही जीवन रहना। इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं इस मधुर गीत के साथ, मगर हां, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि गीत के बाद बातें अभी बाकी हैं मेरे दोस्त।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है, तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत भारती। दोस्तों, आज हम आपको भारत माँ के एक ऐसे अमर सपूत की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने अदम्य साहस, देशभक्ति और अपने बलिदान से इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम सदा सदा के लिए अंकित कर दिया। हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की। दोस्तों, जब भी भारत के महान सैनिकों का नाम लिया जाएगा, वीर अब्दुल हमीद का नाम बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाएगा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता ना तो हथियारों की संख्या से मापी जाती है और ना ही दुश्मन की ताकत से, बल्कि देश के लिए समर्पण और साहस से मापी जाती है। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के धानुपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो पेशे से दर्जी थे। बचपन से ही अब्दुल हमीद साहसी, मेहनती और अनुशासित स्वभाव के थे। आर्थिक परिस्थितियां सामान्य थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। युवावस्था में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। वर्ष 1954 में वो भारतीय सेना की प्रसिद्ध रेजिमेंट ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। सेना में रहते हुए उन्होंने अपने अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से अपने अधिकारियों और साथियों का विश्वास जीत लिया।

दोस्तों, सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान को यह भ्रम था कि वो अपने आधुनिक हथियारों और अमेरिकी पैटर्न टैंकों के बल पर भारत को आसानी से पराजित कर देगा। उस समय पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक पैटर्न टैंक थे, जिन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में गिना जाता था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सैनिकों के साहस और मनोबल से जीते जाते हैं। सितंबर 1965 में पंजाब के असल उत्तर क्षेत्र में भीषण युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की ड्यूटी एक जीप पर लगी।

106 मिलीमीटर रिकॉयलेस गन के साथ उनके पास थी। उनके सामने चुनौती थी पाकिस्तान के भारी भरकम पैटर्न टैंकों को रोकना। 9 सितंबर 1965 को जब दुश्मन के टैंक भारतीय सेना की ओर बढ़ने लगी, तब अब्दुल हमीद ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी जीप को खेतों और गन्नों के पेड़ों के पीछे छिपाकर दुश्मन के टैंकों पर सटीक निशाना साधा और एक एक करके कई टैंकों को उन्होंने नष्ट कर दिया।

दोस्तों अगले दिन भी उन्होंने अपने अभियान को जारी रखा। दुश्मन को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके आधुनिक टैंक किस दिशा से निशाना बनाए जा रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद ने अपने अदम्य साहस से कई पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान की सेना में भय और भ्रम पैदा कर दिया। 10 सितंबर 1965 को उन्होंने एक बार फिर दुश्मन के टैंकों पर हमला किया। इसी दौरान एक पाकिस्तानी टैंक ने उनकी स्थिति का पता लगा लिया और उनकी जीप पर गोला दाग दिया। इस हमले में वीर अब्दुल हमीद गंभीर रूप से घायल हो गए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनके पराक्रम ने युद्ध की दिशा बदल दी। पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को भारी नुकसान उठाना पड़ा और भारत ने इस क्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल कर ली।

दोस्तों वीर अब्दुल हमीद की वीरता और असाधारण साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया। दोस्तों वीर अब्दुल हमीद केवल एक सैनिक नहीं थे बल्कि साहस, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में देश प्रेम और दृढ़ संकल्प हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज भी उनके गांव और धामोपुर में लोग उन्हें गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं। उनके नाम पर देश के अनेक विद्यालय, सड़कें और स्मारक स्थापित किए गए हैं। भारतीय सेना के जवान उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठकर स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं तब हमें उन वीर सपूतों को अवश्य याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की। तो आइए आज हम सब मिलकर इस महान योद्धा को नमन करें और संकल्प लें कि हम भी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम भारत माता के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को शत शत नमन करते हैं।

न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:30 होने को है। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। तो लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म फूल और कांटे का ये गीत। संगीत नदीम शर्मा का था, रचना समीर की थी और आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। अगली प्रस्तुति फिल्म नरसिम्हा से है, जिसे अपनी आवाजों से सजाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आलेख है जावेद अख्तर का।

कुमार सानू की मधुर आवाज से सजे अगले गीत को हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। इसका संगीत दिया है नदीम शिरवन ने और रचना है नवाब आरजू की।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे चित्रपट संगीत का। 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर

0: से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र

0: ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्र राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन

0: to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन-सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने के खातिर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तीन प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों के खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदायशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। दो अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमूई हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जाम मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन दो अहम मौजूआत से मुताबकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्कगीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मौशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम एसनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए।
2: बस 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य

0: प्राप्त करें और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलोहमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मंजूरी दे दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरून मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रुपये थी, जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रुपये मालियत की हो गई है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सिमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मश्क के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतल्लिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। खत्मी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पहले दिन वोटरों को 1,68,200 से ज्यादा फॉर्म्स तकसीम किए गए। 7,600 से ज्यादा इंदराज के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दिल्ली में 13,033 पोलिंग बूथ्स हैं जो 1,45,10,298 वोटरों का इहाता करते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज इंदराज का अपना फॉर्म दाखिल किया और कौमी राजधानी के सभी अहल वोटरों से नजरसानी के जारी अमल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरें और उन्हें अपने मुतल्लिका बीएलओस के हवाले कर दें। उन्होंने इस मुहिम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सही और दुरुस्त वोटर फहरिस्त एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद होती है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तस्ना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तस्ना को आज तक के लिए मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्कु है कि इस

ऐसे उन सनअतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल, खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी, केमिकल्स, ऑटोमेटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। आज हुल बगावत के शुजातमंदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकतिया और भोगनादी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर मामूली हौसले और मुतजलजल जज्बे की एक मजबूत अलामत है जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सियाहत की वजारत ने मुल्क के सियाहती मकामात के डिजिटल वसीले से फरोख को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत के सकाफती मकामात की शान शौकत को पूरी दुनिया के सामने मुतासर कुन अंदाज में पेश किया जा सकता है। शराकत दारी के तहत गूगल इंडिया आलमी सफरी रुझानात, मुसाफिरों के रवैये और शवाहिद पर मबनी सियाहती तरक्की में फरोख के लिए डिजिटल तरीकेकार के जरिए मालूमात फराहम करेगा। जनरल धीरज सेठ ने आज फौजी अमले के 31वें सरबरा की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह इस ओहदे पर फाइज हुए हैं जो चार दहाई से ज्यादा मुल्क की गरां कदर खिदमात के बाद अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हुए हैं। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के साबिक तालिब इल्म हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में फौजी कोर में शामिल किया गया था। जनाब रवि अग्रवाल को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड का एक मरतबा फिर चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उनकी मुद्दत कार कल से 31 दिसंबर 2026 या आइंदा अहकामात जो भी पहले हों तक होगी। तकरूरियों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने उनकी दोबारा तकरूरी को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मदरसा तालीमी निजाम में कल से एक बड़ी तब्दीली का निफाज होगा। नए इंतजाम के तहत उत्तराखंड मदरसा तालीमी बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत रियासत के सभी अकलियती तालीमी इदारों का इंतजाम रियासत के तहत होगा। रियासती सरकार ने उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारों के एक्ट के तहत नया निजाम मुतारिफ किया है जिसके तहत उत्तराखंड रियासती तालीमी अथॉरिटी अकलियती तालीमी इदारों को तस्लीम करने, उनके कामकाज की निगरानी करने और तालीमी मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदार होगी। यह नया निजाम मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी बिरादरियों के तालीमी इदारों का अहाता करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस अदालती हुक्म को कलअदम करार दे दिया है जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को खत्म करना था। अदालत ने इस बात की तौसीख की कि अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने का हुक्म अमरीकी आईन की 14वीं तरमीम के खिलाफ है। अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने पक्तिका, पक्तिया और कुनार सूबों में पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में औरतों व बच्चों समेत 36 शहरी हलाक और 160 जख्मी हुए हैं। मिशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हदूद में भी फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की मुबैना खिलाफ वर्जियों की पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा है। अफगान मिशन के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान शिमाली बहर अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। आईएमडी ने जुलाई के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मामूल से कम बारिश की भी पेशगोई की है। फीफा आलमी कप में मराकेश और पैराग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मराकेश ने सनसनीखेज तौर पर मैच 1-1 से बराबरी के बाद नीदरलैंड्स को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अमेरिका के बोस्टन में पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से 3 के मुकाबले 4 गोल से हारने के बाद जर्मनी हैरानकुन तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। कल देर रात अमरीका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 से जीत हासिल करके ब्राजील ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आज रात अमरीका के टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 बजे से खेला जाएगा।
ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔

0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
2: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा समानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए। उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका निश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सकें। सबसे बड़ी जरूरत थी इस देश में लैंगिक समानता,
1: बिल्कुल
2: जेंडर इक्वलिटी। जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता, प्रवीणता, काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन मानों को रखा जाता है और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
2: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं ये 100% कवरेज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलनी चाहिए, खास तौर से जिन्हें जरूरत है।

0: और यह 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है। जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा। सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह यह है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा। अब सोचिए, इस देश में 2/3 आबादी को, यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की, उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है। यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं, इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे, उसी को देखते हुआ ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक हैं या संकेतक हैं वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की, तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015 से 17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है। जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022 से 24 में ये हो गया 918, और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की, उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी, वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी, वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है। तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
0: देखिए, बेरोजगारी का घटना, इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही हैं। सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था EPF में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। एम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका PF कटता होगा, यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी, उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, PF कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका PF कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना PF कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं यह आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप PF कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका PF कटने लगा। तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई PF तो नहीं कटता। आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेकर कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा। उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में

0: इससे जाने लगे हैं
1: बिल्कुल
0: और खेतिहर लोगों के खासों से किसानों की स्थिति में
1: स्थिति
0: सुधार
1: भी
0: हुआ है।
1: बिल्कुल आपने विस्तार से बताया। और एक और बड़ा रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें हम सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?
0: देखिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी वो इन्होंने सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना, हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में हर ट्यूबवेल के ऊपर, वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा यानी जो ऊपर की धूप है धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में। जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है, यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दैन की जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
1: बिल्कुल, तो कई और संकेतक हैं जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं। और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
0: इसके सीधा सीधा मतलब है आप समझिए पूरी दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से आ रहा है, सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
1: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
0: पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है। हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है, कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था। कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ है।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मंथन।

म्यूजिकल शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आपने सुना फिल्म कुल्फी का एक गीत जिसमें आवाज थी सोनू निगम की, संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने और रचना थी सौम्या जोशी की। अगला गीत हमने लिया है फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट से, जिसे लिखा है पुनीत दीक्षित ने और आवाजें हैं ईशा गौर और फरहान साबरी की।

न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। अगला गीत हमने लिया है फिल्म 1947 अर्थ से, संगीत दिया है यार रहमान ने, रचना जावेद अख्तर की है और आवाज दी है हरिहरन ने।

अभी आपने सुना फिल्म 1942 लव स्टोरी का एक गीत। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और आवाज थी लता मंगेशकर की। अगला गीत हमने लिया है 1947 अर्थ से। संगीत रचना यार रहमान की है, आलेख जावेद अख्तर का है और आवाज है हरिहरन की।

0: आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कुमार सानू और सोनू निगम की मधुर आवाज से सजे इस गीत को हमने लिया है फिल्म आप लौट चले से, जिसके संगीतकार हैं नदीम श्रवण।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। समय हुआ है 10:30। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में कलाकार देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन। आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग पूरिया धनश्री।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन। आपने प्रस्तुत किया राग पूरिया धनश्री। न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। 11 बजने को है। अब से थोड़ी देर में सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और

0: कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सांवरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy.